मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है।

0: अमन चन्ही लम्हेबात, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से
1: डीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
2: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बढ़ाएंगे एक ऐसा कदम जो सम्मान का भी है, संवाद का भी और अपनत्व का भी। आइए दिल से जुड़ते हैं उन हाथों से जिन्होंने हमें चलना सिखाया और उन आँखों से जिनमें आज भी हमारे लिए ढेरों दुआएं बसी हैं। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों के लिए में। कहते हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और अब हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे सी गीत के साथ।

सोना लैला को आप सुन रहे थे फिल्म घरांदा में। और देखिए प्यार हमें आपसे है और बेशुमार है। अब कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से जरूर हुई है, लेकिन आपका और हमारा प्यार तो इतना ज्यादा है कि उसका तो खैर कोई सानी ही नहीं है। तो आपका प्यार हम तक पहुंचता कैसे है? जी हाँ, पहुंचता है आपकी ईमेल के माध्यम से। तो हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ आपको, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतजार है आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का और आपकी प्रतिक्रियाओं का। दोस्तों आज शुक्रवार है, आप सभी जानते हैं, और ये दिन है समर्पित किनको? जी हाँ, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन ना, आज की तारीख है 12 जून, और आपको पता है आज हम एक और विशेष दिवस है आज के दिन, और वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन हाथों में मेहनत का बोझ नहीं सपनों की उड़ान मांगता है ना? और इस वर्ष की जो थीम है ना, वो है रेड कार टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यह थीम इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, और परिवारों को ऐसा सम्मानजनक रोजगार मिले कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो आइए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और मुस्कुराने का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, 14.1 MHz एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कभी उम्र को केवल जीवन की संध्या माना जाता था, लेकिन आज बदलते समय के साथ ना ये धारणा भी बदल रही है। वरिष्ठ नागरिक अब केवल अनुभव के धनी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखे जा रहे हैं, और इसी सोच से जुड़ा है एक बेहद नया शब्द, और वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध ना उन सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों से है जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसमें ना स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पर्यटन, डिजिटल सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सहायक उपकरण और देखभाल से जुड़ी उनकी अनेक गतिविधियां शामिल हैं। भारत में ना वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह जो क्षेत्र है ना, यह तेजी से बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त कर रहा है। आज ना अनेक ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे उद्योग हैं जो ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों को और अधिक सुरक्षित, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सके। दरअसल उम्र केवल ना वर्षों की गिनती नहीं होती, ये होती है अनुभव, ज्ञान और जीवन की समझ का खजाना। इसीलिए ना बहुत जरूरी है कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं को समान महत्व दें। अब ना जो सिल्वर इकोनॉमी है, इसी दिशा में एक बहुत पॉजिटिव पहल है, और ये जो संदेश देती है कि बढ़ती उम्र केवल देखभाल का विषय नहीं है बल्कि अवसरों और संभावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है ना? और जब हमारी सोच और हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं और उनकी जरूरतें एक साथ मिल जाती हैं, तो उनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू, है ना?

फिल्म प्रेम गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में ये गीत। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव की अपनी गति और अपनी जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बात उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं बल्कि संतुलन और सहजता से भी जुड़ी होती है। शायद योग हमें भी यही सिखाता है। अक्सर योग का नाम आते ही ना कठिन आसनों की तस्वीर मन में उभरती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अर्थ कुछ और है। ये शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार सक्रिय बनाए रखने, श्वास पर ध्यान देने और मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें ना अपने शरीर की सुनना सिखाता है। जी हाँ, ये हमें ये बताता है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। आइए हम ये सुने। ये बताता है कि हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन भर दूसरों के लिए समय देना। बढ़ती उम्र में योग लचीलेपन की प्रतियोगिता नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शरीर और मन के साथ एक सहज संवाद का माध्यम है दोस्तों, और ना कुछ सरल अभ्यास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। आखिरकार योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं होता बल्कि स्वयं के साथ ना एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है। इसीलिए बढ़ती उम्र में योग का अर्थ लचीलापन नहीं बल्कि सहजता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योग अपने जीवन में जरूर उसको स्थान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे शरीर का दर्पण है। और हमारा जो हमारी आत्मा अगर स्वस्थ होगी तो हमें अपने आप उस परमपिता के दर्शन हो जाएंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये सुमधुर गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नियमित श्रोता जुड़ चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत शब्दों में हमें एक संदेश देते हैं। वो लिख रहे हैं, वरदान खुशी आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निशब्द तुम्हारे सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस क्या बात है। नमस्कार, आप हमें नमस्कार लिख रहे हैं और ये कौन है? ये है जी हाँ नवीन भाटिया जी, मोती नगर नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ हर दिन बने रहने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, ये हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से। लिखते हैं, सोनाली बेटा राम राम, आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है,

अगर इस पर अमल करें तो जिंदगी सफल हो जाती है। लेकिन आज के समय में फर्क है, मैं तो यही कहूंगा अपने साथियों को, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन पर कोई दबाव मत दो, तभी आपकी जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी जानते हैं हम सुन रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आज हमारे आसपास इसके कई सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। एक समय था ना जब चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल ने दुनिया को अपनी हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। आज बहुत से बुजुर्ग इस नई दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। कोई वीडियो कॉल पर दूर बैठे बच्चे से बात कर रहा है तो कोई ना मोबाइल से बिल जमा कर रहा है, तो कोई नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है और ये बदलाव बहुत खुशी देता है ना। लेकिन हर नई राह की तरह इस राह पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कई बार फोन संदेश या लिंक के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, ओटीपी या बैंक से जुड़ी बातें साझा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए ना तो आप बस झिझके मत, अपने बच्चों, परिवार या बैंक से पूछ लीजिए। देखिए एक सवाल पूछ लेना बाद में परेशान होने से कहीं बेहतर है। नई तकनीक से डरने की नहीं, उसे दोस्ती करने की जरूरत है, है ना। और बस इतनी सी बात याद रखिए कि समझदारी और सावधानी दोनों साथ रहें। दुनिया बदल रही है और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफर कभी रुकता नहीं है। और जब इस सफर में आपके साथ हम सफर हो एफएम गोल्ड, तो क्या बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और बहुत ही सदाबहार गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। और आज आपके साथ मैं हूँ, जी हाँ, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कहते हैं घूमने फिरने का शौक उम्र नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद ही उन्हें घूमने का असली मौका मिलता है। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना हर उम्र में अच्छा लगता है। हाँ, बढ़ती उम्र में सफर पर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर जरूरी है ना। घर से निकलते समय अपनी दवाइयाँ साथ रख लें और मौसम के हिसाब से तैयारी जरूर कर लें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो घर वालों को अपने इस यात्रा की जानकारी देकर ही जाएं। सफर के दौरान बहुत ज्यादा सामान उठाने से बचें, मोबाइल साथ जरूर रखें और हाँ, जरूरी नंबर उसमें सेव हो तो और अच्छी बात है। अगर थकान जरा सी भी महसूस होना तो कहीं पर भी ना रुककर थोड़ा सा आराम जरूर करें। सफर का मजा तभी है जब हम उसे आराम से जिए, है ना। मतलब भागा दौड़ी ना करें, अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें और जहाँ भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। घूमना फिरना सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना। यह रोजमर्रा की दिनचर्या से ना थोड़ा बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अच्छी यादें बनाने का भी एक जरिया है। इसीलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर सफर का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। बस थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ निकल पड़िए एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि आपको क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन कहाँ आपसे मिल रहा है।

पसंदीदा फिल्म झूठा कहीं का। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। हमारे साथ हमारे ना एक और दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है सुदर्शन मुखी जी, उनके साथ है अनिता मुखी और सिमरन मुखी, और ये हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सारी बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, धन्यवाद। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं, ये आज के समय की एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ना इस दूरी के साथ एक खालीपन भी महसूस होने

ऐसे में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दूरियां हमें रिश्तों को कमजोर नहीं करती। जी हाँ, दूरियां हमारे रिश्तों को कभी कमजोर नहीं करती। आज का फोन, वीडियो कॉल और संदेशों के जरिए अपनों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो गया है ना। और कई बार ना दिन भर की बहुत, अगर हम बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहते हैं तो इसके बीच में कुछ मिनट अपने दोस्तों से या अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातचीत करके ना दिल में एक बहुत अलग सी शांति और सुकून हमें मिलता है। बढ़ती उम्र में ना दोस्तों, पड़ोसियों और अपने शौकों से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। ये आप हमेशा याद रखिए, जीवन केवल बच्चों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। हाँ, उसमें अपने लिए भी एक जगह होनी बहुत जरूरी है। अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता है जब हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसीलिए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पसंद की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। बच्चे भले दूर हों लेकिन रिश्तों की गर्माहट दूरी से कम नहीं होती। कभी एक फोन कॉल, कभी एक मैसेज और कभी छोटी सी मुलाकात भी दिलों को करीब बनाए रख सकती है ना। तो बस यही आप हमेशा सोचते रहिए, देखते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए और अपनी जिंदगी में प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि इस समय में आपका हम सफर अगर आपके साथ है तो इससे ज्यादा भली बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने उस जीवन साथी का साथ हमेशा निभाते रहिए, उसके साथ समय बिताइए और जीवन के इस पड़ाव को उतने ही प्यार और खूबसूरती के साथ जिए जिस तरह अपना आप पूरा जीवन जीते आए हैं।

कल रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, कभी संगीत सुनने का शौक था, कभी बागवानी का था, कभी डायरी लिखने का या कुछ नया पढ़ने का शौक था। था क्यों? है होना चाहिए ना। जी हाँ, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच ना ये शौक कहीं आपके पीछे रह गए ना, लेकिन अब तो समय है, आप इन्हें फिर से अपना सकते हैं। संगीत मानेंगे ना, मन को सुकून देता है। बागवानी जो होती है वो हमें हमारी प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है। और अगर आप लिखने के शौकीन हो तो क्या बात, अपने मन की बात कहने का ये एक सुंदर जरिया बन सकता है। ऐसे शौक न केवल समय को हमारे सार्थक बनाते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। जरूरी नहीं कि आपका शौक बहुत बड़ा हो, कभी किसी पुराने गीत को सुन लेना। और अगर पुराने गीत सुनना है तो आपका कहाँ बने रहना है, हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो किसी पौधे की देखभाल कर लेना या फिर दिन भर के अनुभवों को कुछ पंक्तियों में लिख लेना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जीवन की खूबसूरती यही है कि सीखने और नए अनुभवों के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए अगर कोई पुराना शौक आज भी दिल के किसी कोने में दस्तक देता है ना, तो उसे फिर से अपनाने में संकोच कैसा। कभी कभी वही पुराने शौक जीवन में नई खुशियां लेकर आते हैं, है ना।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम आपके साथ एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहते हैं और वो है, जी हाँ, जीवन प्रमाण यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधा। अब क्या हो रहा है ना कि समय के साथ बहुत से काम आसान होते जा रहे हैं और तकनीक का लाभ अब हमारे बुजुर्ग लोगों तक भी पहुँच रहा है। ऐसी एक सुविधा है जीवन प्रमाण, जो पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। अब क्या होता है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर साल ये प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले इसके लिए बैंक या हमें संबंधित कार्यालय में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब ना जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे हमारे बुजुर्गों को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ये सुविधा ना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है

स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण बाहर जाने में कठिनाई होती है। तो आप जीवन प्रमाण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, जी हाँ, jeevanpraman.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहाँ इस सुविधा से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारियाँ बहुत विस्तृत रूप में मिल जाएंगी। और नई चीजें सीखने और अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, हम बार बार आपसे यही कहेंगे। और जब तकनीक जीवन को सरल बनाने में मदद करे तो उससे दोस्ती कर लेना ही सबसे बेहतर है।

तरह आप ही के जादू के साथ इस कार्यक्रम को हमने पूरा पूरा किया और अब देखिए घड़ी हमें इशारा नहीं करती कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम

0: 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूर संचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi,

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। कहते हैं कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और कुछ रिश्ते वक्त से भी बड़े होते हैं। आज जिस फिल्म की बात हम करने जा रहे हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा प्रेम जो बिछड़ता है, इंतजार करता है लेकिन हार नहीं मानता है और फिर किस्मत उसे दोबारा मिलाने का रास्ता खोज ही लेती है। आज हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 1967 की चर्चित फिल्म मिलन की, जिसका निर्माण किया था दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर एलवी प्रसाद ने। फिल्म के लेखन में अथरैया मुलापुरी, अदुरुथी सुब्बा राव और वीरेन सिन्हा का योगदान रहा। यह फिल्म 1963 की चर्चित तेलुगु फिल्म मूगा मानसूल का हिंदी रूपांतरण थी। खास बात यह है कि दोनों फिल्मों का निर्देशन अदुरुथी सुब्बा राव ने ही किया था। अपनी ही फिल्म को दूसरी बार दूसरी

भाषा में दोबारा बनाकर उसे भी उतना ही सफलता दिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रेम, विश्वास और पुनर्जन्म के ताले बाने से बुनी गई मिलन उस दौर की उस चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसने दर्शकों को सिर्फ भावुक ही नहीं किया बल्कि उन्हें ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि शायद कुछ रिश्ते सचमुच जन्मों के लिए बने होते हैं। तो दोस्तों, अगले 29 मिनट 30 सेकंड तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए निकल पड़ते हैं फिल्म मिलन के उस सफर पर जहां प्यार, संगीत और यादें हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। इस सफर का आगाज करते हैं फिल्म के एक बेहद सुरीले और दिल को छुलाने वाले गीत के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मिलन, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं मिलन के कलाकारों की। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, यमुना, प्राण और देवीन वर्मा। वहीं सहयोगी कलाकारों में थे सुरेंद्र, श्यामा मुखरी, लीला मिश्रा और डेविड अब्राहिम जैसे अनुभवी कलाकार, जिन्होंने अपने छोटे छोटे लेकिन अहम किरदारों से कहानी को और मजबूत बनाया। अगर बात करें नूतन की, तो वो अपने सहज और स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती है। मिलन में उन्होंने राधा का किरदार निभाया। राधा की मासूमियत, उसकी भावनाएं, उसके मन का दर्द, उसका प्रेम, नूतन ने इन्हें इतने सादे और असरदार अंदाज में निभाया कि राधा का किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया। वहीं बात करें सुनील दत्त की, तो उस समय अपने गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन मिलन में उन्होंने गोपी नाम के एक भोले भाले नाविक का किरदार निभाया। उनके इस सरल और भावुक रूप को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और ये किरदार आज भी उनकी यादगार भूमिकाओं में

खास बात ये भी है कि फिल्म में नूतन और सुनील दत्त दोनों दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे। 1960 के दशक में नूतन और सुनील दत्त की जोड़ी दर्शकों के लिए काफी लोकप्रिय थी। मिलन में दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री और भावनात्मक दृश्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि मिलन दोनों कलाकारों के करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी कहानी और संगीत के साथ साथ इन दोनों कलाकारों की शानदार जुगलबंदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

बात करते हैं मिलन की कहानी की। मिलन की कहानी शुरू होती है राधा देवी और गोपीनाथ की शादी से। शादी के बाद दोनों घूमने निकलते हैं और एक नदी पार करते समय गोपीनाथ को अचानक कुछ अजीब अजीब याद आने लगता है। वह बीवी जी, एक पुराने महल और एक लड़की गौरी की बातें करने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। गोपी तुरंत उसे गौरी के रूप में पहचान जाता है और वो भी उसे पहचान लेती है और बताती है कि इस जीवन में साथ रहने के लिए ही तुम दोनों ने पुनर्जन्म लिया है। वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। पिछले जन्म में गोपी एक सीधा साधा नाविक था जो गंगा किनारे अपनी दादी के साथ रहता था। वहीं राधा एक जमींदार की बेटी थी। रोज नदी पार करते करते दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन समाज और हैसियत की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच राधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। राधा अपने मन की बात कह नहीं पाती और अपनी किस्मत मानकर शादी कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद वो विधवा होकर अपने मायके लौट आती है। उधर गोपी हमेशा की तरह उसका सहारा बनता है। दोनों के बीच का अपनापन लोगों को खटकने लगता है और गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। तब हालात बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं। तब राधा और गोपी साथ रहने का फैसला करते हैं और गांव छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नदी पार करते समय उनकी जो नाव थी वो भंवर में फंस जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार फिर जन्म लेता है। इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है वर्तमान समय में। बूढ़ी हो चुकी गौरी उन्हें बताती है कि वे दोनों उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए इस जन्म में फिर से मिले हैं। गौरी उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में देखकर खुश होती है और अपने गोपीनाथ के हाथों में दम तोड़ देती है। यही है मिलन की कहानी, एक ऐसा प्रेम कहानी जो बिछड़ना जरूरी है लेकिन खत्म नहीं होता। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और जन्म मृत्यु की सीमाओं से भी आगे निकल जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, मिलन की कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली थी उनका संगीत भी उतना ही मधुर और यादगार था। इस फिल्म का संगीत उस समय का सबसे बड़ा यूएसपी था। फिल्म का संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। उनके शानदार संगीत को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया। गीत लिखा था मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीतों में कठिन उर्दू या साहित्यिक हिंदी के बजाय आनंद बख्शी ने बेहद सरल भाषा का प्रयोग किया था। उनके इसी सरल शब्दों का जादू ने मिलन के गीतों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी और उन्हें हिंदी फिल्मी जगत के सबसे सफल गीतकारों में शामिल कर दिया। वहीं अगर आवाजों की बात करें तो लता मंगेशकर और महान गायक मुकेश की जोड़ी ने इन गीतों को गाया। यही वजह है कि मिलन के गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में वही ताजगी और मिठास खोल देते हैं जो लगभग 6 दशक पहले घोला करते थे। इस फिल्म का एक गाना आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं को लंबाई ज्यादा होने की वजह से बाद में फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोदावरी नदी और उसके तट के इर्द गिर्द हुई थी और उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो चलिए चलते हैं एक और गीत की ओर।
1: मुबारक हो सबको समान

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है मिलन। अब हमारे पास हमारे श्रोताओं के ढेर सारे मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला मेल आया हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से और ये है नेहरू चौक से अनिता जाधव, सोनल प्रसाद और ये है सुरेश जी का। और ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा का। वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती का। और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता का। और ये मेल आया है हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की और ये लिखते हैं आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाना जानकारी रोचक किससे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और ये है गांव हीरावली वाली फजीका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और हिमांशु है ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये है भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी और इनके साथ हैं तिवा नशी खेड़ा फजीका पंजाब से। और ये हैं नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव। और ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बहन, भावेश कुमार, सनी, जैमिनी कुमार और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन इनके साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा।

और पूजा परिहार है। आज आपका आप जो चर्चा कर रहे हैं अपने दौर 1966 की बेहतरीन फिल्म मिलन, ये 67 की फिल्म है मिलन, जिसके अभिनय किया था सुनील दत्त और नूतन जी ने, बिल्कुल सही बात। और ये है संबलपुर फाकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिलन को हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में गिना जाता है जिनकी कहानी, अभिनय और संगीत तीनों ने मिलकर एक अमित छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज हमने बात की उस फिल्म की जिसने प्यार, बिछड़न और पुनर्जन्म की कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पर्दे पर उतारा, साथ ही याद किए इसके वो मधुर गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी सुन लेते हैं।

श्रोताओं, उम्मीद है पुनर्जन्म और अमर प्रेम की इस अनोखी कहानी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा के किसी और सुनहरे किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वक़ार मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख़वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए-कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संग बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतह मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। ये फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आम्मा के महकमे के अफसरान के साथ कल एक मीटिंग की सदारत की जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तला नशरियात की वजारत ने टेलीविजन रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसवदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजह किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज करना है। उसूलों का ये मुसवदा इत्तला नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नजरसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीके कार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए।

0: Okay. The third seeded Indian art class, Chinese Taipei's Chen Su, Yu, 21-6, 21-9 in a one-sided quarterfinal clash. The Intermeteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज

0: सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश

0: उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश

0: कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी।
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान,

0: एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

स्पॉन्सर प्रोग्राम चिंगेन एनपिंग एनसीईआरटी मीडिया में भी कादियो आकाशवाणी करगिल वक्स पो फितोगत सुत सुम छन दुक्का सता आकाशवाणी दिल्ली ना प्रोग्राम उर्दू सर्विस रिलेवेड

हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, आपको बता दें कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ मौसीकार नौशाद अली से की गई मुजीब सिद्दीकी की गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में भी 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुई हैं, खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वज़ीर दाखला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2026 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख्वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूएकार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संग बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। फौज के सरबला जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स ने इस मीटिंग में शिरकत की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28

मन्नाडे और साथियों को सामान्य भी आप सुन रहे थे फिल्म थी सीमा, मौसीकार थे शंकर जयकिशन। प्रोग्राम की अगली पेशकश सुषमा श्रेष्ठा, पद्मनी कोल्हापुरे और साथियों को सुनिए फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, नगमनिगार साहिर, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल में और दिमाग में कुछ उलझन सी पैदा हुई कि शायद ये सितार मेरा मकसद नहीं है। उसके बाद बब्बन साहब से मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, उसमें भी जी नहीं भरा। फिर मैं सोचने लगा कुछ और चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। दरअसल खोज करते करते बात वहां पर निकली कि मैं कुछ कंपोजिशन तर्जे बनाना चाहता हूं। तो मतलब ये कि फिर इसी सिलसिले में मैं अपनी किस्मत आजमाने बंबई आया 1937 में। तो ये बुनियादी तालीम मुझे लखनऊ में नसीब हुई।
1: अच्छा, उस वक्त तो मौसीकी और संगीत के बारे में तसव्वुर राज से बहुत मुख्तलिफ था हमारे माशरे में,
0: जी
1: तो आपको घर वालों ने भेजा था कि आप बम्बई जाके ये कीजिए या आप अपनी मर्जी से आए थे?
0: सब घर वालों ने भेजा तो नहीं बल्कि निकाला मुझे।
1: अच्छा
0: और मुझे यानी मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह बख्शे वो खिलाफ थे इसके कि भाई ये बुरी चीज है और ये कहाँ मौसीकी और संगीत और हमारे खानदान में कोई ये नहीं करता है और इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। और बड़े होने के बाद तुम्हारी शादी ब्याह कहीं अच्छे घर में नहीं होगी, ये बड़ी खराब लाइन छोड़ दो। तो मैं बहरहाल अटका रहा उसी पर। तो एक रोज उन्होंने मुझे बिठा कर ये कहा कि भाई तुम रातों को गायब रहते हो और जलसे और संगीत सभा और ये वो, ये मुझे अब नहीं पसंद है। एक फैसला करो, घर चाहिए या ये तुम्हारा संगीत चाहिए, आज दो में से एक चीज को अपनाओ। तो मैंने कहा हुजूर घर आपका, आपको मुबारक और ये संगीत मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हैं घर से। तो मैं साहब घर से निकल गया। तो
1: अच्छा
0: भेजा नहीं गया था, निकाला गया था।
1: अच्छा तो बम्बई आ गए?
0: जी हाँ,
1: जी
0: बम्बई आया। फिर बहरहाल नौकरी की तलाश में फिल्म कंपनियों के गेट के ऊपर खड़ा रहूं, कोई अंदर घुसने न दे। और साहब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिलचस्प बात बताऊं आपको कि वो सीढ़ियों के नीचे मैं सोता था
1: जी
0: और उसी बिल्डिंग में एक उस वक्त की मशहूर मारूफ हीरोइन रहती थी। वो हमारे सर के ऊपर से जाती आती थी, उनको भी नहीं मालूम है कौन नीचे सो रहा है। तो जब मुझे पहला मौका मिला है म्यूजिक देने का, एक ट्यून बनाया है मैंने जिसको गवाया उस वक्त किसी हीरोइन से, तो वो लीला चटनीस थी और वही मेरे ऊपर से जाया आया
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: करती थी।
1: अच्छे।
0: तो ब्रॉडवे के सामने मैं साहब सोया करता था।
1: ये ब्रॉडवे सिनेमा थिएटर।
0: जी हाँ। तो साहब उसकी रोशनियां उन अंधेरों में देखा करता था भाई मैं, और अल्लाह से दुआ करता था कि खुदा जाने ये रोशनियां
1: कब आपका मुकद्दर बनेंगे?
0: मेरी किस्मत का हिस्सा कब बनेंगी। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, बहुत से यानी जाड़ा गर्मी बरसातें सब से गुजरी। और एक वक्त ऐसा आया कि साहब उसी थिएटर में हमारी एक तस्वीर ने जुबली की और हमको बुलाया गया, हार फूल पिराए गए, बड़ी तारीफें की गई। तो मैं उसकी बालकनी पर खड़ा हुआ, थिएटर की बालकनी पर, और सामने की फुटपाथ को मैंने देखा। और आप यकीन जानिए कि आंखों में आंसू आ गए मेरे कि ये सब तारीफ कर रहे हैं, हार फूल
1: सही।
0: पहना रहे हैं। और मैं सामने देख रहा था विजय भट्ट साहब जो उस तस्वीर के डायरेक्टर थे, और वो तस्वीर का नाम था बैजू बावरा।
1: वाह,
0: तो विजय भट्ट साहब कह रहे भाई कहाँ खो गए तुम, इधर लोग मुखातिब हैं तुमसे। मैंने कहा विजू भाई वो देखिए सामने की फुटपाथ, वो मैं देख रहा हूँ। कहने को हाँ कोई खास बात है? मैंने कहा जी हाँ, क्या खास बात है? तो मैंने कहा साहब वो खास बात ये कि वो इतना लंबा फासला है इस फुटपाथ से और उस सिरे का कि 16 साल लगे मुझे उधर से इधर आने में।
1: क्या कहना, क्या कहना।
0: तो मैं अर्जी ये करना चाहता था कि ये साहब ऐसा नहीं है कि फलूक में या ऐसी यानी किसी को मौका ऐसे ही मिल जाता है, बड़ी जानमारी करना पड़ती है। और मैं ये आपसे अर्ज करूं कि मेरे उस्ताद झंडे खान साहब जिनका मैं असिस्टेंट बना था बंबई में आके, वो मुझसे फरमाते थे कि बेटा जो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाता है, फर्ज करो 2 मंजिले पर या 3 मंजिले पर, उसके जहन में रहता कि मैं 11 सीढ़ी या 21 सीढ़ी चढ़ाऊं, तो जब उतरेगा भी तो उसके जहन में रहेगा 21 सीढ़ियां हैं, गिरेगा नहीं वो।
1: सही।
0: तो

0: उस वक्त लोग कंपोज करते थे, कंपोजर होते थे, अभी इम्पोजर हो गए। मतलब ये कि कोई क्रिएशन जिसको कहिए वो नहीं हमको मिल रही है चीज। हमने मेलोडी जिसको कहते हैं, जिसको धुन या तरस कहते हैं, वो साजों के शोर में वो गुम हो गई है, वो खो गई है चीज, वो और मेलोडी की कमी है। और संगीत में आजकल मगरब का रंग यानी वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत रंग आ गया है, जो कि हमारी इन मौसीकी में वो चीज़ें नहीं हैं। और हम बजाय इसके कि फिल्म मीडिया के थ्रू इसके ज़रिए हम आवाम को और इस जनरेशन को अपने संगीत से आगाह करते या उनको एजुकेट करते, और हमने वो विदेशी संगीत इस फिल्म के थ्रू देना शुरू किया है। आज के बच्चों को अगर हम कोई साइगल साहब का गाना सुनाते हैं या ऐसे सिंगर जो हमारे माने, तो लोग कहते हैं भाई वो इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ वो जोश नहीं है, वो शोर नहीं है, वो यानी। तो मतलब ये कि हमने सेहतमंद रगों में बीमार खून भरना शुरू कर दिया। हम तो यूं कहेंगे हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं कि इसका क्या कफारा अदा हो, किस तरह से हम वापस आए उस जगह पर। अच्छा, और ये कहना लोगों का, हमारे प्रोड्यूसर हजरात का, कि वो क्लासिकल मौसीकी आजकल लोग समझते नहीं हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ये गलत है। इसलिए बैजू बावरा में
1: जी
0: मैंने
1: रास्त जी क्लासिकल मौसीकी की दुनिया पर
0: अच्छा मौले आजम है, या फोक भी हमने हिंदुस्तान के काफी दिए, गंगा जमुना है, या तस्वीर मदर इंडिया है, तो लोगों ने आखिर पसंद ही किया। और मेरा ये यकीन है कि आप इस धरती से जो चीज लेंगे उसकी उम्र ज्यादा होगी, वो हमेशा
1: पायदार होगी।
0: लोग उसको, जैसे कि आज भी मदर इंडिया है, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट तो नहीं है, कहीं लगाइए उस तस्वीर को, लोग हुजूम दर हुजूम टूट पड़ते हैं, और नई से नई फिल्म से ज्यादा आवाम उसमें आते हैं
1: देखने के लिए। हिंदुस्तानी भाषा का है,
0: तो हमें ये आजकल जो संगीत हो रहा है इससे हम मुत्तफिक नहीं है। हमारे कलीग्स मुमकिन है बुरा माने, हमें उनसे माजरत के साथ हम अर्ज कर रहे हैं कि हम जो इस वक्त कर रहे हैं ये गलत है, हमको अपने संगीत की तरफ रुजू होना चाहिए, और इसके जरिए हम आवाम को एजुकेट कर सकते हैं। कि जैसे आज मिडिल ईस्ट में, कैलिफोर्निया और कनाडा, हर जगह जहां भी जाइए लोग कहते हैं भजन सुनाइए, मन तरपत हरि दर्शन को, तो साहब इस भजन को फिल्म के जरिए ये पहुंचाया गया वहां तक, जो लोग भजन का मतलब नहीं समझते क्या।
1: मालकोस राग को समझते भी नहीं होंगे,
0: मालकोस कहते हैं वो मालकोस था, अच्छा भाई वो मालकोस का भजन। तो फिल्म के जरिए कुछ ऐसी चीजें इन्हें हमें करना चाहिए। तो हम आज के संगीत से पूरी तौर से मुत्तफिक नहीं है, ये बहुत ही माफी माजरत के साथ अपने कलीग से हम कई दफे अर्ज कर चुके हैं, आज फिर आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले जो कुछ संगीत होता था उसमें अपनापन होता था, इस देश की मिट्टी की बू आती थी उसमें। अभी जनाब ये इस इल्म के लिए कहा गया है कि ये इल्म सीना बसीना चलता है, उस्ताद ने शागिर्द को बताया, शागिर्द अपने शागिर्द को बताया, चिराग से चिराग जलते थे, लेकिन आज तो हम दूसरों के ताकों से चिराग चुरा कर अपने ताक में जला रहे हैं, उजाला कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है।
1: लेकिन नौशाद साहब, हम इसको इस जाविये से क्यों ना देखें, इस बात को, फन कोई भी हो देखे
0: जी,
1: वो बदलती हुई कदरों का साथ अगर न दे तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर खामी होगी, उस फन की खामी होगी। अकदार बदली हमारे हमारे हमारी सोसाइटी की, हमारे लोगों की, सुनने वालों की, गाने वालों की, तो अब मसलन दरबारी में आपने बैजू बावरा की उधुन बना दी, यमन तरपत मालकोस में बना दिया, सवाल यह है कि उसी आधार पे अभी और कितनी धुनें बन सकती थी, जबकि हमारा मुल्क सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनाता है। तो हम इस नुक्ते नजर से इसको क्यों ना देखें कि वही हमारी सुर तो साथ सभी जगह होते हैं।

0: के कुछ नया अंदाज ये दलील देते हैं कई आजकल के मौसीकार। मैंने गुफ्तगू की कई आजकल के मौसीकारों से जिन पर ये इल्जाम है कि वो मगरबियत की तरफ उनका रुझान है, तो उन्होंने कहा कि हम नए पैमानों में अपने सुरों को और अपने रागों को डाल के अगर पेश करें ढाल के, तो इसमें इसमें क्या बुराई है।
1: नहीं, लेकिन ये बात वाजे नहीं हुई कि अपने सुरों को हम नए पैमाने में ढाल कर, मसलन अगर आप दरबारी ये दरबारी में कोई ट्यून बनाएंगे तो दरबारी का वो ठाट, वो आरोह, वो अमरोह, वादी संवादी, वो गंधार दरबारी की वो तो रहेगी
0: और कोशिश होगी कि बिगड़ न पाए।
1: अच्छा, वरना फिर उसको कोई एंग्लो इंडियन दरबारी उसका नाम रखिए, फिर दरबारी नहीं रहेगा। तो उसको नए सुर भैरवी, सदियों से भैरवी कुछ अपनी पाबंदियों के साथ भैरवी कहलाती है, अगर उसको बदल देंगे आप तो फिर भैरवी नहीं होगी, कुछ और हो जाएगा। तो अपना राग, अपनी अपना ठाट कायम रखते हुए उसमें आप कुछ नयापन लाइए, इसका मैं कायल हूँ, ये सही फरमाया आपने, लेकिन उसकी शक्ल ना बिगाड़िए आप।
0: नहीं, अगर वो प्योर फॉर्म हो, मसलन मंत्रपत है हरि दर्शन को
1: जी,
0: ये तो बराह रास्त मालकोस के ऊपर आधारित है और उसका उसका उसकी शक्ल रूप कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, वो धुनी ऐसी है। लेकिन कुछ सुर जो हैं, मतलब हमने कुछ सुर मालकोस से लिए, कुछ दरबारी से, कुछ बागेश्वरी से लिए, और उनको नए अंदाज में और नए ऑर्केस्ट्रा के साथ जो जदीद ये हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ अगर पेश करने का एक तजुर्बा किया जाए, या हमारे वो म्यूजिशियंस कहते हैं कि हमने किया, तो ये तो सुनने वालों की नुक्ते नजर से कहूँ तो काफी कामयाब है।
1: देखिए, हर मुल्क अपनी तहजीब से पहचाना जाता है, अपने कल्चर से पहचाना जाता है। आप अगर ऑर्केस्ट्रा, जैसे आपने जिक्र किया, एक तो ऑर्केस्ट्रा बुनियादी तौर से हमारे संगीत में था ही नहीं, ये तो हमने बाहर के मुल्कों से लिया है। हमारे वहाँ सब सोलो इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल प्लेइंग के लिए बनाए गए थे, ऑर्केस्ट्रा तो हमने बाहर से यानी बाहर के संगीत से इंस्पायर होके हमने ग्रुप बनाया कि एक ऑर्केस्ट्रा होता है भाई। लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा में आप अगर अपने साजों को तरतीब दें जो आपके साज हैं, तो भाई मसलन जैसे आप तीन सप्तक बना लीजिए कि एक सरंदा हो, एक सरंगी, एक उससे छोटी सरंगी हो, इसी तरह से इन्हें चेलो की जगह आप एक बड़ा साज ऐसा बना लें। अक्सर जैसे अली हुसैन साहब चेलो बजाते थे, पहले सरंगी बजाते थे, लेकिन चेलो उन्होंने सरंगी स्टाइल से बजाना शुरू किया। ऐसा साज मैंने बड़ी शक्ल में सरंगी बनाइए, उसमें वो तार चढ़ा लीजिए, तो आपका ही साज होगा। फ्लूट्स जो है ये बांसुरी, इसके सप्तक बना लीजिए। सुरभार है, सितार है, छोटी सितारी है, वीणा है, इनके सप्तक बना लीजिए। तो इस सूरत से अगर मिजराब के साज या फूक के साज हम अपने साजों को तरतीब देकर अगर एक ऑर्केस्ट्रा की शक्ल बनाए, तो ये होगा कि भाई जैसे कि आपने शाशकीन खरीदा और आपने उसका सूट बनाया, तो लोग कहेंगे कपड़ा भी विदेशी है और लिबास भी विदेशी। अगर उसकी शेरवानी आप बना लेंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या खूबसूरत शेरवानी पहनी है, वो भूल जाएंगे शाशकीन है। तो
0: लेकिन ये मगरबी इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल तो आपने भी किया,
1: हमने किया और जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ वायलिन आप इस्तेमाल कीजिए, वॉल्स न बजाइए उस पर, वॉल्स की जगह आप भोपाली क्यों नहीं बजाते हैं उसके ऊपर, और बज सकती है। तो आज साज भी विदेशी आपने लिया और उसके ऊपर मेलोडी भी विदेशी आप बजा रहे हैं, तो फिर हमने कोई यानी जिद्दत नहीं की, आप उस पर क्यों नहीं अपना राग बजाते हैं। तो मतलब ये है कि यानी जदीद साज जो इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल हूबहू हम उन्हीं के रूप में पेश कर रहे हैं, उसमें अपना अपनी झलक कुछ है नहीं बाकी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जरूर इस्तेमाल हो, हम भी करते हैं भाई, लेकिन कुछ तो अपनापन भी हो कि उसको अपना ही आप
0: जान जाए।
1: तो मैं मेरी ये अर्ज है इस सिलसिले में,
0: तर्ज जब आप बनाते हैं
1: जी
0: तो आप पे क्या कैफियत होती है, किस तरह बनाते हैं तर्ज?
1: भाई ये एक ऐसी चीज है कि अगर मैं किसी शायर से ये पूछूं कि शेर कैसे कहते हैं आप, और यानी

अलीशा चिंडारे, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म का नगमा। नगमा निगार थी गुलजार, मौसीकार शंकर एहसान लॉय। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए दीदार यार फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी किशोर कुमार की आवाज़ों में, नगमा निगार साहिल लुधियानवी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

स्वामी जी जब सुनिए कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का रंग बाल का याग्निक सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले, आदेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया आदेश श्रीवास्तव ने।

सुनचे फ्रू एक साल दो साल फ्रू समझे गाते एहतियात बामे दे हमेशा फ्री दुंदा जो है गाती चाहे जवानी इन्ना सुरबु गाती हरकत इन्ना फिजिकल एक्टिविटी इन्ना गा चीश इन्ना सुनचे फ्रू एक छिमी मी न चोल ट्रीट बार बोशी सुनचे फ्री दुन लगाते घना गारिस पेरा मीता ऊंचा गाली गुलोज मी बचा चेज बनो खुई मी के थ्रू खुई ने थ्रू खुई दिमाग में लफन गा खुई दिमाग में रिकॉर्ड छेन बोशी जरा सन एक ने एक दिन ओदे खुई ओदे दे नतीजा भी छिन जरा खुई दे मतलब सुनचे न से खुई दे मन डेवलपमेंटेड एज पे अनुखो गचुक माहौल छेन लुस गचुक एनवायरमेंट ची खो देन खुई एनवायरमेंट छेन खो पलाई सों नोरो नंबर लुस ना नोरो होने में ओदे गति से बदे सहबत कम्युनिटी लेकिन गति गस दी का जोर छे बस इन जमाना गति यूजुअली गति कम्युनिटी जो है गति एक साल बस का मी सुनचे फमा खुर गफु गति मन नेग्लेक्ट बे दे गति समय दुखो में युद्ध में फ्रीक में गति मैं इंसान जे थर्ड पर्सन जो मैं संभव में गन गारी गाता पेरा छाना इंसान नजर भी मकसद पिन बेटा कि सुनसे फ्री दिमाग को 80% मेच्योर हो छिमी न चुक्सला छाना दिस पेरा गाँव में कोई हरकत ना आ खो थों खान ना मी किस सोंग में रिफ्लेक्स ना ना सोंग में रिफ्लेक्स ना गाँव में कोई दिमाग पर रिकॉर्ड छिन चु बेटा छाना एक न एक दिन ओदी नतीजा कम से कम एक न एक दिन ओदी नतीजा भी छिन चु दे नमजाल है तांगा तिस फ्रूस मतलब दे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना बाकी चीज से नंगा तिस मन एविडेंस हवा में दूर न दूर है जख्म में लेकिन नेचुरली एक एक प्रॉपर एक स्क्रीन टाइम में मोशन बेटा लिमिटेड स्क्रीन टाइम चो मोशन चेज बना गाता दो नेचुरल इन जरा सो मसो बुलस दे कंटेंट उन चियो फ्रूस चीलते सो बेटा दो मन इंपॉर्टेंट इन की कंटेंट उनको चीलते दी दे इमेज दे इफेक्ट उनको पर्सनैलिटी के छे पूरे इम्कान लोशन और प्लस एक्सेसिव यूज बना नेचुरली मतलब गाते दरें गाता साइंस इज प्रूफ बस की बेटा कि इसमें दो रेडिएशन वगैरह होते हैं जो कि एक डेवलपिंग एक चुक दा चुक नशीनुमा छे दिमाग पोषणत पे इम्कान लोशन छा ओदे कंटेंट उन खोए खोए पर्सनैलिटी के पूरे इफेक्ट छे जरूरी अपना जगह चीची के नाते नजर पो मन हटे मावा जगह चीची के नजर जपना कुले कुले अफ्रू खिमा जो है मिगी बिनाई कमजोर छे खतरे लोशन या मिगी पोजिशन शख्स फराक लोशन खचिया सुकिन रचिन गाल लगाते छाना और चौका खोए बिनाई का असर बचिन मिगी का असर बचिन मेरे अमाल अफ्रू ला मोबाइल बताऊँ सको घंटा इस दुख जो है फ्रू ला मोबाइल बताऊँ आराम बस गाते मतलब गाती आसाई शिफे गाते दो कतर बना लेकिन नेचुरली दी जो है बेड इम्पैक्ट जरूर छिन बेटा चाहे खोए मेंटल हेल्थ इन चाहे खोए फिजिकल हेल्थ इन नेचुरली नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट चीज का मुश्किल चीज दे मिसाल रेडियो टी वी वगैरह गाता अंदर गाती लग हर कोई लग स्मार्टफोन सगला मोबाइल यूट्यूब चैनल बाकी सोशल मीडिया सब अप्रोच चाहे मतलब गाँव में दी बारे थोड़ा बहुत गाते सम फ्री न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा बेटा हाइजीन हैंड वॉशिंग अच्छो बार क्वेश्चन जो छाना जंक फूड आने ना कंसेप्ट चीज नेचुरली जंक फूड ही बेड इम्पैक्ट मैंने सही इम्पैक्ट चीज जंक फूड ही रिजल्ट जब मैं जिन गाँव का रिसर्च बसिन है बेटा दे स्टडीज बसिन एक टाइम में जंक फूड फैशन सो मिल जाना यहाँ देना सोचना अच्छा चंदे मेरे खाने ने जो है एक दिन एक सोचना स्टेटस संभल ची टाइप चीज की भाई शाम ने पिज्जा था शायद याद इन बर्गर जीत अच्छा बर्गर जो स्पिनिंग छाना लेकिन दरे कुलिया कुलिया दी देना गाँव में रिसर्च गाँव में खुलिया दरे दिन गाँव का रिसर्च बना दिन गाँव में नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्दी मतलब मैं यारी फ्रू मोटा हो चाहूँ जरूरी इन फ्रू खुरी खुरी प्रॉपर एज पे ऐसा भी यारी नशनुमा सो सो मोशन 10 साल फ्रू चम जो मोशन 9 साल फ्रू चम जो मोशन दे सब कुछ फ्रीक मना मोटे करना दो अनहेल्दी ज्यादातर जो जंक फूड सा ज्यादातर बुझे एनर्जी मना हाई कैलोरी डाइट टेंगर से चिंसु जाना छाना मैक्सिमम ची है चिंसु बेटा जो बना ओबीस छचा ओबीस बिना मोटापे शिकार छचा छाना जंक फूड करना मोटापे शिकार छाना मोटापा खुरंग एक बेशिलन चिंसु बेटा कम से कम 10-15 कस्म बीमारी ब्लड प्रेशर छचा शुगर छचा लिपिड ज्यादा छचा हीज ऊंचा अपना तकलीफ छचा रुमा हर चीज तक मोटापे खुरी हम अलग सो मसो डुल बाजी अच्छा छा लज बा फिजिकल एक्टिविटी बाजी अच्छा छा उसका मुश्किल तो सवाजर मो छा छा जंक फूड मैंने बिल्कुल खोया दू आया अवॉइड भी चीज इन ओकेजनली मैंने जो है दू यहाँ रूटीन गाती कल्चर हिस्सा चोचान या गाती दून गाँव या दून गाँव जो है दून गाँव में सोसाइटी लज बस दू चीज सुन गाँव में जो है डिस्करेज बार वो दू चीज सुन गाँव में अवॉइड बार

mimang sun nga ta gharibi yut yang duna yambo yambo phrubal bi sun la talim pu khwa thobin mitang yang duna baki naksbar dui stroli ka nga ta in na sang darang lu se tin chuk lo sana ngistung chukshu ge nuk nga ta mirsis bas kani nang gawe nuk nga ta child labor any phrubal bi sun tam chik khongis las ben dun zu na karod chik na lakh chik phus las be dun chuk gani umuri satpu लो अगे कना लो चुजबी झपा युते इंसु यंग फ्रुगल बिसुनिस सगे दिलास यंग दुना वर्कशो बिलास होटल ना रेस्टोरेंट इलास दुना गता कंस्ट्रक्शन साइट उंग चसिना ने होटल सिकचा यंग दुना गा तामिराती लाशिकिना या खल्लिन लाशिकिना दोनी का लास बेंची गयो दिनसु योनी गजुक स्ट्रोल रि गयो दिनसु गजुक वजह रि गयो दिनसु गावस बसंग ता दि चाइल्ड लेबर पु यानी फ्रुगल बिसि लास बचस पु दक्षना गता नक्सबर दुग दन तो सब पचिक पहला इसके बाद नल रजर संग निमा सुनिया नुक गरीबी हो चस्प हो चस जो तक्षण अति अर्गेस्ट्रिट हिंदुस्तान यंजर ना या म्यूली थोगे का जर ना मी मामो मी मास मामो अता दुसुक सो दिन सुक गाँव नी जगी कमाई मानी न्यूनते छेस्त्रो लिका होंग कुंती मिचु स्प्रल चस्प काफी नक्सबर दो चन सोचता चाहे दूस बस यंग होंग कुंती फून प्रोवल भी सुन यानी लस बचुचे का मजबूर सोचते नीस रिजिका हो चुके का तालीम मेचस पी वजह से कहाँ था दक्षण म्यूली थोड़ी कल्टा ना का तो दूसरों से ना था मलसरिक थों मचेत गांव ने नुक दक्षण नंग स्कूल में तंग या अंगनवाड़ी सेंटर ना था गांव ने नुक फ्रुबल भी सुन ला खर्ची ना यंबो यंबो ना था साउथ ना तंग दोन ना था मेची वजह से का फ्रुबल भी सुनिस लस बचस पी ना था मजबूर सुन से होते चुक यहाँ सुमिका की ना था अनएम्प्लॉयमेंट यानी रेट पुना था मिसाल दरे से दी तूस पियां जाना का तो लस की थी पुना था म्यून यानो का था कम बहुत म्यून से चाना दूस बस यंग अतामाल ला या दोन ला गाँव ने यानो कहाँ रोजगार चिक में तंग कहाँ मजबूर सो तो कुछ यंग सुम जीर से कह जो कि ना था मी मामा नक्स यानी अतामा मामा ना था अवेयरनेस में तंचु कहाँ यानी तख्सपा में तंचु खागो में तंचु कि गा फ्री का अगर लस बचुक ना कोई का रुगे का चीत यूं मी लस बाना का तो गजुक नक्स बार दोरी गया दुखारी फोचा सिन कोई रुगे का यंबो यंबो कोई दिमाग का दिस को लागो में भी वजह से कंग अतां फु मामो ची किस लस बात थोस दिन तो यहां तो ना समाज ची मामो म्यूली थोगी का अतां मलसा रिगेस्ट्रित खाची का अतां तो जो सुमत गवानो सोसाइटी अनुक समाज पे अनुक हाको को बराबर अतां डंडा थोबा में यानी मी खाची का मी मांस खाची का अतां हाको को डंडा थोबे मी मांस खाची का अतां हाको थोपा में खोंग अतां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अतां चाहे ओदी स्ट्रोलिका यानी खाको को माथो भी स्ट्रोलिका खोंग कुंती फ्रून लस बचस पे का मजबूर सोच रहे हो दिन चुक न्यू अतां दी वजह से कसना लाजर संग फ्रूनी तालीम लेन चस पे का फ्रूनी तालीम पे का असर चचा यहाँ दोना खोए रुगे का यंबो यंबो दिमाग का असर चचा यंग यूं मत पी तुस पे अनु फ्यूचर जनरेशन यानो का था अधि फ्रूबल भी सुनी छोगो हक हकुक जो तंग दुन का था चेह चसन सुजु दुनी का था दुखार पुचा सन सुक यंग फ्रूनी का था हक जो तंग नुआ का था पायमाल चचा सन सुक रजिस्टर हिंदुस्तानी का था आई ने अनु गजु का आर्टिकल रे गजु कानून निक चो सुजरना आर्टिकल 24 आर्टिकल ना थी हिंदुस्तानी आर्टिकल 24 यानो का था दूर रुन सुकी लो चुजबी का ना गा फ्री उमुरी साथ पुलो चुजबी बच्चे न्यूनसे का तो ना का तो खां लस बच्चे का लुकपार बस होते सुक खां लस बच्चे का कानूनन जुर्म दांस होते सुक यंग आर्टिकल 21A यानी आर्टिकल 21 यह रुकना था तो रुन सुकी गा फ्रूची का हक को खां यानी फ्री चंग रिन में पा तालीम पुखा थोपर वोशिन दरे खां हक चुक जाक्सो दिन सुक गावनी उमुरी साथ पु लो थ्रूगी कना लो चुजबी नंग खां चंग रिन में पा तालीम हेप चुक दरे खां हक चुक जाक्सो दिन सुक यंग अति गा छोशेन ना कतों नता चाइल्ड लेबरी का फ्रुबल बिसी लस बचस पिक नता छस यानी दुनी के लोकपार बस होता हूँ दुन मावा चुक दरे नता छसा बस होता हूँ खोए सोर तांग सोता हूँ چانا دونی کا ماتا اس نو جکچا یونی ماتا شربا نچونی کا جزت نقص بر دنیا چیلنج جون یونزے بی مینا میچا بی مینا گتو ماتی کا کھکری کو تو رول ریکو تو بنا ماتس تعلیم پو ام بچا ماتی ماتن گا سوسائٹی چن دک نہ گتو او دے سوسائٹی انو تا گا شربا نچون چک دک نہ یا شیل سب کن فری گا کھا فری تعلیم پو کھتو پے نتاں دوی تعلیمی ضرورت پچیو

0: means pucho tam chi kha chani dun nga te sa go lep chuk cha go mana kha chani chuk yang du na ga ja ga cha child labor chen dot na ya frugal bisuni ka du zo lasri ben nyot na ba chu gin dot ka tu ma te du report ba ro chen chuk child labor office ma tang yang du na campaign nga te muhim sul ba ro chen chuk duni lok par la tana nis para ma ma ma muk song nis para de ke ja se yang dang zuk ba communication skills samchik ngata khachanin deskorla salbobase tesolep jukumina akashvani kargil australia nukjukse muhammad ali arapa assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: sapazik nalla ujusere mo rintojan vaksunena vakspinse akashvani kargil sharba na chuni program pula dostas pe bahut bahut shukriya
1: bakhshiz azhar sahab yeres dikha nga dawat tanse ngari idea and share bibila ki communication skill चीन और चा जरूरी इंजरे सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल गंतिस का तिगजर ना ची गंता में नंगिस दुखसु निज दुखसु पना गंतंग इसके नाजर खान पो यारा मतलब छूते तमे जरे छूता कम्युनिकेशन दिया जर चिंदे एक दूसरे से बातचीत करना दिया छूते तमे जरे सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल दो जो शिन सुजु दो सखत इम्पोर्टेंट चीज शिन सु पूरे दुनिया तीनों गा चुखला शिफिला सबसे पहला गंती बेनिफिट गुंजरना कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दो गति यहाँ छिका जैसे कि रिलेशनशिप जैसे नंगाती अतना आना अमन अम्बो छुता अतना अमन स्पेरे में छूत नंगाते छूत चुक पनाते कम्युनिकेशन स्किल को सही उत्पन्न आते अतना अमन आते स्पेरा छुचिन सेकंड चीज गंती फ्रेंड्स ने अम्बो आते गा चौक स्प्रेक ताना दोनों आते कोलीग्स किन ने अम्बो छुता गा चौक स्प्रेक ताना फ्रेंड एंड कोलीग्स ने अम्बो आते गा चौक स्प्रेक ताना दो चीज से छूते जरे और सेकंड यू फायदे चीन सुचुंग अंती हिंसा छत माती यूली शिक्षात माती फ्रेंड शिक्षात फैमिली शिक्षात दो सोल्यूशन फिला कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी चीज छीन सुख छुता मंतंग हिंसा ची गना छिन जब मंती स्किल इन मिसअंडरस्टैंडिंग जाना जब गलत फहमी जाना अंतंग तेनो ची छिन जर बना की देखना आता हिंसा छिन दो फिला आते कम्युनिकेशन स्किल सुंगाते जरे की ड्यू ड्यू इन ड्यू ड्यू इन जर खोना छूत पना दिजिंसा कम छिन सुख और थर्ड चीज नाती चीन सुजु गंती एक इंक्रीज कॉन्फिडेंस बचिन सुख कम्युनिकेशन स्किल से छुता गंती सेल्फ कॉन्फिडेंस पो खूब बूस्ट बचिन सुख छुता गंतंग घर ची सोना इंटरव्यू सोना या गंतंग कॉलेज चिका सोना गंती कॉलेज का गंता टॉपिक चिता या गंती फ्रून गंती असेंबलिया छत असेंबलिया छना गंती फ्रून बुली कम्युनिकेशन स्किल्स कम से उत्पन्ना खो बुली क्षलिन चिक दोखो छत जब खो कम्युनिकेशन स्किल्स वो हाई उतना को कॉन्फिडेंट अप लुशिन जो को ठीक बस देन असेंबली नो गतो फोटोफिक चो दो जिन अब सेकंड चीज चीन सुजु जैसे कि गाते जसना प्रोफेशनल बेनिफिट्स छुता मति करियर जर छुता मति गा चे का टीम वर्क जर चाहे मति बेस्ट कस्टमर रिलेशनशिप जर सबसे पहले करियर एक करियर गति फिला सबसे इंपोर्टेंट चीज गति यूथ फिला आजकल की छुता दरे आजकल गा जॉब चिगियो नंगांती हर जगह इंटरव्यू बसे खोका चोखचिदुक बिहेवियर पोगा चोखसी दुख खोगा चोखसी बसे लॉन्ग सिंधुक दुख सिंधुक कम्युनिकेशन स्किल पोगा चोखसी दुख दो अति मेन इम्पोर्टेंट इंजिया गांव अति कैरियर काउंसलिंग चीगे फिलाए इन नसे गांव अति कम्युनिकेशन स्किल
0: बख्शिस छना दान दक्षन कम्युनिकेशन स्किल जरबना शर्बना चुंग मामूरी गांव अता नुक दुजो सालत हमी गोनो की इंग्लिश का स्पीच ताचा या मिसाल के तौर पर जगह जगह चीजी की और गला बस इंग्लिश ता तान न लगा तो दो आते जन की इंग्लिश कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल पर गला तो जन अब कम्युनिकेशन स्किल येरे जर भी मतलब पिंचो की आता गति समझो गला जोस्ते का यंग चीज ठीक बस छूट न का तो ओदे में अनु आता कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो देन तो यंग निस्पारिक पु आता सिर्फ जरचस पुचा उच मीन सु कम्युनिकेशन स्किल पेनो बल्कि आता गजल्ला यंग चिकिस पर ठीक बस नियन न न का तो गा शर्बना चुन चिकिस अगर का तो यंग चिकिस पर ठीक बस नियन में अगर को तो खवा क्यू तो न का तो यंग चिकिस पर खवा छु दे न न का तो देमियन का ता यानी कम्युनिकेशन स्किल पर गेल यंग दोना गा गतन दक्षिण सर समझो के गतन डिस्कशन छे ग्रुप डिस्कशन छे या मेंदा नि से गतन बात छे छे चन दनो चिक पु चिक पिंगा त समझो यानी राय ला इज्जत जा चाऊ गतन कम्युनिकेशन स्किल हो जन छु यंग दोना आता बॉडी लैंग्वेज जस्ट ना जुकिंग अति अंगतस लकपा स्कूल अंगतस पर ता या मी घर का बत अंगतस या मिसाल अंगतस बकरी रुई अंगतस अलग अलग पाड़ अंगतस स्पेरा तारा ता ता अंगतस हर का बत दो अंगता अगर मुझे सुन सुजु कम्युनिकेशन स्किल है मुझे सुन सुजु बख्शिस
1: यरे जस्ट दी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इंग्लिश का ता चा दो सबसे इंपॉर्टेंट इन दो इंग्लिश के ता चा अति इंपॉर्टेंट मेन छुदा कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज

0: इंटरनेशनल लैंग्वेज दरिंग अंति अंग्रेज कुनिस गांता इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश तंगसोत मांता मजबूरन इंग्लिश दरबा अब मतलब दुख या सबक पो अगर गांती इंग्लिश सबक पो इंग्लिश का बीच मध्य तो एक लैंग्वेज चीन अगर दो जगह गांती बल्ती का या पुर्की का बीच होत पिनना चुता गांता दे सबक कुछ पर सबसे इजी छिन आजकल के स्टूडेंट ला मैक्सिमम प्रॉब्लम छ छत की इंग्लिश को पना सबसे पहले को ए बी सी डी सबर गोस देखना दे ए बी सी डी सक सेंटेंस जो से गाचो हो यूं मत चुता सिलब मुरगोस को उसके बाद खुआ दो मीनिंग पर बताऊं मोरोस लेकिन खुआ सेंटेंस शो मोरोस छुता दो सिर्फ लैंग्वेज छिन दो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इंग्लिश होम कम्युनिकेशन स्किल दर चमेन छुता इंग्लिश पो योम कम्युनिकेशन स्किल मजर बनाते कम्युनिकेशन स्किल पो चिन सुनी छुता छुच्चा गत उसका चिग चाहे दो इशारे को चाहे बॉडी लैंग्वेज चुक दिया थो मोरोशिन का स्टेज चुको ना कि यारी कम्युनिकेशन स्किल पो का चो कप ची दुख जर चाहे गंतीस कते गजर चाहे दुख गजर या गाते गुद चिकिस गंतीस इशारा बस तंग मना खाची क्यों मत बुली छुद में छुद पत खाची का पूरा इशारा बस आता है तंग दो से कम्युनिकेशन स्किल चीन या
1: बस जो चना गा मते सचरबना चुन इस पर आता जो शेल सब कन फून या अगर का तो तना गा सुचिंगन का स्टूडेंट जनो अगर कम्युनिकेशन स्किल लड़के लर ना का तो क्वेश्चन गता ठीक बस टेन जसन जो खुरी डाउट खुरी टीचर पर नजर बन जसन जो गाज बसे खुआर गेला बसे खुरी शेस सुने अनु तरके बयान जे अर गेस क्यों मा यंचा सिंसु यहां दोना कम्युनिकेशन स्किल अगर गेला यत नका तो दोस बसे गता फन के चिक दोन सुजु की गा जगह चंगा त ग्रुप वर्क यानी एज अ टीम वर्क लस बन नका तो दन गता गेला बसे कोऑपरेट बसे सुना सुज डाउन दस लखत बसे लस बयान जसन जो प्रेजेंटेशन गता खास कर दे गता शेयर बना चुने अनु गता नका तो गा स्कूल जे नका तो कॉलेज न नो मता आम बुलेट चना दन अगर कम्युनिकेशन स्किल यदि गेला यत नका तो प्रेजेंटेशन थ्रू गा टॉपिक जे का यानी खतुश शिका यस टॉपिक तमा यंचा सिंजो चना यंग अतस करियर इस पर गतो तनो जु गा लस्के चनो का इंटरव्यू चंग गतो चना गतो मता दे शर्मा ना चुंग चिया दे म्यू लगातस कोनस प्रेफरेंस ता जु गा कंपनी ने गतो या मिसाल गतो गा रिक्रूटमेंट जका तो चना गा वेनो गथा क्विक कम्युनिकेशन स्किल पुर गेला तंग खोर्स गेला बसे स्पेरा ता मा खुयानो ओदे क्यूट पुर तंग ओदे पोटेंशियल पुर तंग एट गेला बसे कोनो स्पेरा तारा ता मा एन एन न गतो देनु मेनी दे म्यू लगाता ज्यादा प्रेफरेंस ता चन सोजो कोशिश
0: कम्युनिकेशन स्किल्स ची कनल धनी जो सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल यारे जनु की यारंग खेल इंदुक से यारे जर यारंगी नो कम्युनिकेशन स्किल होते रे कम्युनिकेशन स्किल्स पिला सबसे पहला यारी नो कॉन्फिडेंस होम रोशन चुदा कॉन्फिडेंस होम रोशन और यारे का यारी टॉपिक चो चाहे यारी लश हो चाहे यारी प्रेजेंटेशन ची यारे एक मोनिटर करे स्थान होतना दो यारंग कॉन्फिडेंट नंबर चाहे दो गलत तुम मार ये कॉन्फिडेंट नंबर दो ताने यारी कम्युनिकेशन स्किल्स पो खोन छुचिन चुदा का चौथा चिन जरे छुता दरे दि जमाने नु नाती करंट ईयर नु कम्युनिकेशन स्किल्स यू मा नाती चाहे स्टूडेंट ही फिला चाहे जो भी तैयारी बिन बजा चाहे नाती यूपीएससी तैयारी बिन होता दो नी फिला सिक सबसे इम्पोर्टेंट है ना जैसे कि नाती इंटरव्यू लेन मत यूपीएससी का तो ऑनलाइन हो मत दो ने नु खची सवाल टीन दुख कि ये क्या होता है खची का पता हूँ मैं पता हूँ मना सॉरी सर आई डोंट नो सिंधु बाकी खची की मना गलत इन सी दो कॉन्फिडेंस ही बस है जर इंदु दो जर बना आ साइड पुला मतलब जो इंटरव्यू लेने उन्हें तो पता चल दो कि गलत नजर मार को कम्युनिकेशन स्किल पो मतलब एक कॉन्फिडेंट के साथ उसने बोला जरे यू ना गलत चीज पो बना यार इस कॉन्फिडेंट नंबर एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज नंबर बना दो यार सबसे बेहतरीन जो चीज
1: बख्शी जो यंग अगर कहते हो तो कम्युनिकेशन के लिए फनकी का तोलता ना दरिंगा तो जो गा नंग चानूंगा ता क्लैश तो होता जो गा ना चाहूँ सुन सुसंगा ता स्पेला तारा अच्छा थे या ना सुन सुसंगा ता जिन चाचित दें गा ता कम्युनिकेशन छो स्ट्रोल चिक यानी छो गा ता रीजन चिक वजह चिक यों तो जो कम्युनिकेशन स्किल ठीक मत पियो जिसका सुन सुसंगा नुक ठीक बसे अगर बातचीत मचा ना यानी स्पेला छु छु पिया अगर कोई नुक छुट में ना यानी क्लियर बसे जर भी अगर छुट में तो दूस बसे मिसाल के तौर पर गा ता फोनो फोनो सुसंगा ता क्लैश चेत या अने मी सुसंगा ता क्लैश चेत है जो चना दो गा ता
0: या बख्शिश या दोनों गांधी सबसे मेन गांधी यूल्ला हर जगह प्रॉब्लम है सबसे पहला गांधा मतलब गा ची शिन्ना कम्युनिकेशन स्किल यार अनपढ़ चिन्ह वो कम्युनिकेशन स्किल बस यार अंगार कामयाब छे मेन छुता दोला आ की इंसान पुलिस एक बुली का कलम मशीन जैसे कि गांधी यार जैस की ना अकेले छेदरे ना गांधी जिंशा छेदरे काका फोनो या से गांधी जिंशा छेद छुता पहला गांधी अगर कम्युनिकेशन स्किल सही होना खुआ छुट चुक से हुआ दू गलती मीन मिन खिरे गलती मीन मिन ये गलती मीन या ड्यू बस अंगंतिस के लिए मिस अंडरस्टैंडिंग सोम से ड्यू सोम मंजरे एक कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल निस्केन अच्छी चिक पो उतना और अच्छी पो छूत पे क्वालिटी उतना चुता दो कम्युनिकेशन स्किल निस्के सोम से और दे कॉन्फ्लिक्ट पंगंती दे जिंशा खत्म छ चिंदा बातचीत का कम्युनिकेशन स्किल जर चिंदा ठीक बस छूत पना चाहे दो गंती

0: रिश्तेदारी सुन, चाहे अंति दी ककन फोन सुन, चाहे फैमिली किसी के मेंबर के साथ भी हो, मतलब द कम्युनिकेशन स्किल पोतना यदि दे जीशा ना एनु क्लेश पो सके कन खत्म छ छिन जो
1: अ बक्ष जो छना यंग अत जगर ग दो फन के मन मंगमो जो ध्यान न गतस मेन मेन फन के रिजन ग तो लीडरशिप जसस में न जो की शर्बना चुन न लोग अगर का तो गा सुचे कम्युनिकेशन स्किल पर गया लो न ग तो क्लियरली खोज जर बगास ब्रेक छु चुपा यंग कुने न यंग कुल्ला छु चुपा यन चाव न ग तो खो बाकी मीन यानी बाकी सुसेटियन खानी मीन खोस लीड बायन जसन सु खो लम स्थान मा यन जसन सु छना जर भी तोन बुदा एन किंग अतस गा जगा जगा अगर का तो यंग कुने इंस्पायर बचस न यंग कुन अतस ट्रुलचस न ग तो खो लम स्थान चस न ग तो या गा जगा जिक सिर ता चन न गा लश यानु सिर ता मार गो छ जु तिंग अति यू लो न नो जसन जो खास कर दुन नु कम्युनिकेशन स्किल यु चस पु मन खा छन तो यंग दुना दसन अतस स्कूल इस पर ग तो या कॉलेज यूनिवर्सिटी अगस पर ग तो न दसन अत प्रोजेक्ट अलग अलग अलग अलग टॉपिक प्रोजेक्ट साइंस खासकर प्रोजेक्ट उन्हें गा फ्रूजी की अगर तो गा स्टूडेंट जी की कम्युनिकेशन स्किल अड़केला तो खो ओदे प्रोजेक्ट पहनो या ओदे कम्पिटिशन पहनो अड़केला नंबो परफॉर्म पाए अड़केला नंबो खो दो स्थान में
0: मना बतौत की आम जैसे कि पॉलिटिशियन जरना जब खोने कम्युनिकेशन स्किल सही उत्पन्ना खोने जब मंती इलेक्शन होत दैट टाइम पे फोन इस गचोक्षी बसे खुदी आईडी पब्लिक इलाक्तु जान दुची कि हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम ये स्कूल बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, चाहे वो बने या ना बने लास्ट में, पर उनका कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा टॉप लेवल पे होता है कि खोन इस दे कम्युनिकेशन पर जनती दिमाग इन छुच चुकी छुतंगाते ड्यू बेत नाते ड्यू बस बना दे से कम्युनिकेशन टेकन एयर जैस कि आते स्कूल प्रोजेक्ट जैसना सुनी या माती दारे प्रैक्टिकल इज जिसना चता दोन इनसिक जब स्टूडेंट खोरंग कॉन्फिडेंट होत खोरेज प्रैक्टिकल लुखो बस होना खोरेज दे प्रैक्टिकली बे लस पो प्रैक्टिकल जब मैं चीज इंजुंग आतेस साख पो सिलखान पो मातेस प्रैक्टिकली बेत जिसे कहते केमिस्ट्री नुगा रिएक्शन ची बना दो आते प्रैक्टिकली न्यू टेस्ट ट्यूबिंग बस आते स्थाने छुता जब खो कॉन्फिडेंट लेवल पो हाई होत कम्युनिकेशन स्किल पो हाई होता तो प्रैक्टिकली खो बांगे चिंतु
1: कम्युनिकेशन स्किल का सल्पो बसे त्रिसो लिपचुनतन मोहम्मद अली अरबा लजू पिकाय रजी जो जो सुन मोरन सोचन वासुन और वास्मि सा आकाशवाणी करगिली शर्वना चुन टीम प्लस तुस तास बहुत बहुत शुक्रिया छु इन देना मनम बहुत दिन से आकाशवाणी करगिली शर्वना चुन प्रोग्राम पर थमातुन जमात यु मितु सुनन यंता यंतु तुक देमन पुंगा असलाली जस जस से जो खुदा नर सामने फार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डो

0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
3: हेलो मम्मा।
1: हाय।
4: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: रंगी बिजनेस उल्लास के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेनुन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टैंचाइन कस्टमर उनसा पिल्ले पीस कप्स मांगो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनिका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से योत बुकिंग बेफिया कॉल बाजार 8700014242 का।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
8: 8700014242।
9: मेरी मेविका दियो आकाशवाणी करगिलन वक्स पोफितो के तो सट्टुक नौ मिनट चौहासों सुख का सतान गोला मुकादिर जकिस कतियान वो बहरे तेविल चिप्रो चुगे दियान बसाद।
10: बिस्मिल्लाह।

0: ची सोच चिंच बन आती सु संदे का रिपोर्ट माबाना अनरिपोर्टेड लुसे लास बेन छेनो चिन देगन कोले कोला को लेक्स उजी लास बस 18 साल सो मते गन रिपोर्ट बस या चा मे शोक चसो लेकिन तो सुख केस मना मामूत लेकिन ना जरा जस कांगाती नरा आ दक्सम केस रिलेटेड मैक्सिमम आती कारगिल आ दक्सम दे 2-3 साल यानो ये पोक्सो एक्ट मन मामू छेनो जु दे रीजन पुखरा इन नता दे बारे जानकारी में चस्पो मालूमात में चस्पो पोक्सो चम से पनिशमेंट चम से सफर छात family safar chat koi zanzo safar chat accused pe dana na to accused pani ambo ambo the victims po gan ambo de harkat po cheta koi pura family khuri zanzo po mentally torture cha cheta udun gang ma nga ta sta ka to sta ne di pokso ek pungas ma hamesha gar cha gan zar bat kyunki kargil di chis po zyada phailai so ju mangmo ye chen yo tang nga ta cha khan po mi gi thong khan po mana mangmo yo ode press di ka nga ta chi ba ga chu as ga skill ba wo shin zar bana nga tes ओदे कानून उन सिल्वा वशिने दे कानूनी बारे जानकारी का तो छाना अवेयरनेस का तो ताना दिरिन जक पोसंग जक मगाच जक ची जक ना अवेयरनेस तांग मिमीना यानो ओदे बारे जानकारी तांग मिमीना उदी जक उन जक सीना अवेयरनेस का तो छाना वाकन दी क्राइम उन कम छिन चचाइन मिसाल के तौर पर नता गार्जियन सला नतेस दी जानकारी तांग फ्रू नाबालिग फ्रू लज तांग चास पु जुर्म इन का तो जर ना खामो पन कम से कम कानून लॉजिक से कम से कम 10 में से 3 नफर कानून लॉजिक से दी जुर्म पु बचा में यहाँ तक पोक्सेन अवेयरनेस तंग मना मिला मालूम छाना मिसाल सम्मत अंचिन दे लस पोबा बस दून ला दस बार सम्मत अंग मना मिसाल दस में से 3-4 नफर नता बच क्राइम छचो इतना 10 में से 3-4 नफर ओदे सम्मो या दे अवेयरनेस वो दसे खत्म छचन बख्शीजो
1: बख्शीजो यहाँ से चिदा जमुन ना जो अगर का तो गमल सेगा दे तो प्रबल बिशी लाज बात हो दिया जिक चीज रिपोर्ट बॉक्स हम ना का तो खा कानूनी चोक्स ना या खा यंग रिपोर्ट बस जरे चांग जिक्स मो विक्स मिक तो मचेता
0: नता नते कानून यानु लीगल इलीगल लशियत गा जगह चाहता इलीगल लस बात हो नंगातंग हर चीजें से रिस्पांसिबिलिटी नंगाते शी बार गोशिन लस बार मरा रिपोर्ट बार गोशिन मस्ता जी का फिक नंबो यारा ना पता चोग यारा पता चोग नंगाते किम्चेस पहनो जुरुम छाचा दुख जरने यारे जुरुम ने जुरुम के खिलाफ यारे रिपोर्ट बार गोशिन चांग खुआर गया पुने जिक्स में छाचे में हो सकता है की शुरू बना खुआ मिसाल के तौर पर यारे यारे रिपोर्ट बना यारी विटनेस यारा गवाह लिंचाइन वो तो यारा क्योंकि यार रिपोर्ट बने यारा दे बारे जानकारी उत्पन्न रिपोर्ट लेकिन बल्कि दे दे बगैर यारा यंग दे रिपोर्ट बखान पो यंग चंग दिक्कत हो चमेन कानूनन चे हो चमेन जब यारा एज ए सिटीजन एज ए शहरी यरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंसानियत यरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाजा गा चंग अति खिमसे चंग अति यूल चंग अति फसपुन ची का जुलूम छात हो चाइल्ड लेबर छात होना क्योंकि कानून यानुक इलीगल इन फल आती रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिखा आते गा जगह चे एक्शन ची गंगा रिपोर्ट बार गोशन तंगाते रिपोर्ट गार बार गोशन जर बना नाता तकसम मिसाल के तौर पर रिपोर्ट गार बो नाते अथॉरिटी जे रिपोर्ट बार गोशन यारी कंसर्न पुलिस स्टेशन जंगाती नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या रिपोर्ट बार गोशन तकसम मिसाल के तौर पर दी चाइल्ड से रिलेटेड जुवेनाइल जस्टिस या सोशल वेलफेयर कमिटी हो तंग खों रिपोर्ट बार गोशन यंग अति मजिस्ट्रेट यानु अते रिपोर्ट बार गोशन मिसाल के तौर पर यारा चीज चीज दियो चेन अति मैक्सिमम मेजर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ला मयन ना कतो यार इज रिटन वर्बल यार इज रिपोर्ट ता मशीन दो मयन ना हायर गुदो बस हायर अथॉरिटी यंग अते रिपोर्ट बार गोशन दुन चीन जब ना अता रिपोर्ट बे यंग अता जगह पता मोशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यंग अति फ्रूस रिलेटेड यो ना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यो चा यंग अता सोशल वेलफेयर नता चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड सोशल वेलफेयर कमिटी होत उदुन यहाँ रिपोर्ट बहुचिन तंग अता मिसल पुलिस स्टेशन यहाँ सोच ऐसे चोस रिपोर्ट मरबी ना का तो या कोई रिपोर्ट पर मरबी ना आता तो बस हायर अथॉरिटी नता सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट इलासों से नते दी रिपोर्ट उन रिबीना यंग चेंज बख्शिस
1: बख्शी जो यार लेकिन फैसला बस मुझ कसा जो आखिर पे यार जंग फ्रेंच यो तंग अति प्रोग्राम यान कानून ला बख्शिस
0: बख्शिस नस यार स्पेरिक मिजलुस दिस पेरोजरेट नता कानून यानु अति फून ला हर कस्मी यारा हिंदुस्तान आईनी हिसाबी का नता कौन ताफुजी मीनंग या कोई हुक्स मीनंग कानून का तो या आर्टिकल्स का तो कानून का तो यों से होता है ना चीजी यारा दिस पेरो चीजी माना इम्पोर्टेंट इन जो कानून यानु हिंदुस्तानी गा कानून चीचो ना हिंदुस्तानी आईन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन मद्देनजर जैसे दे कानून चो होता जो कानून से बाहर कानून या मेत भी आईन कानून दैनिक एक्ट लागू का तो बना दो इनवैलिडिंग नल इनवैलिडिंग नता दे इंपॉर्टेंट चीज चीज गा दिस पर लूज देर गया पुनंगा जरा मैसेज ही कांग तात दे दो इन नति आर्टिकल 21 इज राइट टू एजुकेशन दू नति फंडामेंटल राइट नति हिंदुस्तानी आईन एंड यू नता फंडामेंटल राइट गा

सिलिकेट्स थोमस थॉमसन सूची जैसे कि मिनरल ऑलिव वाइन जेरेंचिक मिनरल्स खाची मत दोन योद जरे जरे इंचो योद जर भी इमकान योद जरे इंचो अच्छा फरक पुंगा तंगा नती दुनिया ती मेंटल पुना मार्स से मेंटल पे अच्छी हो जिन चीजों मार्शियनी मेंटल पे अनुक लगभग लगभग दो गुना निज दो नती अर्थी मेंटली कंपैरिजन अनुक निज दो दे अनुक आयरन योद जरे

0: अलग अलग तरीके के ना था मिनरल्स ना मेटल और थोमा छाता डेट्स ओसला क्रस्ट जो है नती मार्स से क्रस्ट जो है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर की मोटाई है तुम जो है कंपोनेंट पुदे आंची जो तुम से बना देखा मार्स सी क्रस्ट पे का बेसाल्ट या कि इग्नियस रॉक छि किन डेट्स ओसला केमिकल एलिमेंट नतांगा मार्स का ऑक्सीजन सिलिकॉन आयरन मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम ना पोटेशियम थोमा सोसन जो अब नतांगा मार्सी रंग पो मशपी गयो जरिजन मशपो चा थों सुन जुन जबाना मार्सी साथोक पेनोक ज्यादातर आयरन ऑक्साइड थों मा छाछु आयरन ऑक्साइड जरबाना चीन जरबाना आती चक्स ला चाय हम मना मशपो चा दंग देव आयरन ऑक्साइड इन जुल चक्स चाय हम चस पो दे दे चीज पु दे आयरन ऑक्साइड पु मार्सी प्लेनेट का खेत यो तुन जुन जुया मार्सी हवा पु जरना का तो हवा पेनोक सबसे ज्यादा गैस पो कार्बन डाइऑक्साइड यो तुन जुजु की 95.3% तुन सुक देखना नाइट्रोजन 2.8% आर्गन गता 2% ऑक्सीजन गता 0.17% छाना गति जिंदगी वे फिला सबसे जरूरी गता ऑक्सीजन इन दे ऑक्सीजन पु सबसे कम तेदा त्यानो गैस गंग में आना सबसे कम यो पियो जा सिका गता हाल फिलहाल मार्सी का जिंदा लुस्फिया सर्वाइव बीफिया काफी मुश्किल या मुमकिन मे पेन चुकू छाना दिनिंग प्रोग्राम त्यानो नाते छोर तंग की मार्स ना स्पेस एक्सप्लोरेशन बारे अनुक यंग मैसेज चिक चिक अति सिलखन फून लद्या इनकी स्पेस साइंस अनुक जितना हो सके दिलचस्पी लेने दी स्पेस साइंस के बारे अनुक सिले स्पेस साइंस रिलेटेड जितने भी अता चीजों मत दुन गंग में भारे अनुक सिल्वर गुसुक यंतंग गंगमाला उजू छरिंग मजरत की यंतेस दि प्रोग्राम पा वकत फिंग से न्यन मायत पी वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
1: Dun in Mars school la yantang sapik spirarik. Dergebna diring singi dusra topic puyotang rgastit Hindustani space achievements riyani space lung piano khalai lung piano nga tirgastit Hindustani ska tsukshiba si tarqibin yod. Mat pizusana nga tsuga tsuk mission katakhoas launch bacha in dun sa school la yantang sapik spirarik lip chupat pingas shaluk sbedna. Rgastit Hindustani khalai lung pujak bajak yargasi rola chen yotin tsuk. Ninga tirgastit Hindustani khalai program gao isro yani Indian Space Research Organization is Goyot Ben Yotang. Stor Gastit Hindustani Komi Khalai Agency in Zogai Headquarters Po Bangalore Yotin. Makami Khalai Technology in Dun Lekher Bifi. Sana 1969 Yanuk Isres Miyardo Jaks Bin Zog. Dare New Dunya Tisak Pasik Cho Khalai Agency Niana Chik Chik in Zog. Gau Miuli Thorika Lagat Nyunsen Ambo Satellite Launch Bache Kana Kere. Planet Dun Dona Shamsi Research Fila Mingbyung Sons Yotin Zog. Isro बुनियादी तंत्र पुंजुक साइंस चलचलंदों लखेरचा गाज बसे समाजी वास्पेल्जोरी या स्पेल्जोरी लोग प्यानो यारियाज योंचा छोक दोना खलाई टेक्नोलॉजी इन दोन लखेरचा छो इसरे दियो असल तंत्र पु इंजुक इस रोज नती ओम पुमियुली थोक का खलाई लोग प्यानो क्यूचन श्चोसेस्तानी इंजुक दियानु ना फेसे संग चंद्रयान थ्री कामयाबी स्ट्रोलिका दुनिया ती गोमा लूनर सौत पोलिका जेंडस पर भी यूलुनियानुक दान मसोंग Dumen ma autonomous in space docking dona mana lagat nyun se nambo marihika Mars mission kalkanun dun gangma isure badolat in soap. Chandrayaan 3 gau sana nistung nishur saksum yanuk launch basung minang. Di mission istrolika argyastit Hindustan tarikhi goma yuldan gaz zoti satok pika khalai jahaz bu kamyab zustan yanbo soft landing basung min. Agas nistung nishur saksum yanuk चंद्रयान 3 जो तिथा सथक पिका कामयाब सुस्तान्यंबो फाबासोमिन देरगेबना गति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुरतमन जरबासोमिन की अगस्त सिलसे छस निशुर सुमा नेशनल स्पेस डे कोमी खलाई जको मल्ला खोंचा जरे दयानंबो स्ट्रीट लोनिस दियामोल बासोमिन की चंद्रयान 3 फापयत बिमल सावा शिव शक्ति दोना चंद्रयान 2 छक्से सुमत बिमल सावा तिरंगा पॉइंट जस्चजरे चंद्रयान 3 गस्थित हिंदुस्तानी थर्ड लूनर मिशन इन मिंजु यानी ज्योति रोल्ला कल बयत बि सुंपा मिशन पिंजु चंद्रयान 3 कामयाब छचस पुस गस्थित हिंदुस्तान दुनिया ती गोमा ज्योति सौत पोलिका लेबत बिल युलुन दनमिन दोना दुनिया तीज ब्रिपा युलदन ज्योति सथोक पिका कामयाब सोस्तान्यंबो सॉफ्ट लैंडिंग बाय चंद्रयान 3 कामयाब छचस नति खलाई लुंग प्यानुक नति चलचल बखानुन ला यंग लमचिक फिंगसे तंग्स ज्ञानन सुगा चंद्रयान 2 अता कामयाब मसोमिन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल साहिबान भी मौजूद थे। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्ताम पजीर होगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एतमाद किसी भी सियासतदान का अनमोल सरमाया है। सिकंदराबाद में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिश्वत से पाक इंतजामिया को यकीनी बनाया है।
1: हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। साथियों, ये 12 वर्ष गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की दृष्टि से यदि मैं कहूं कि भारत में यह हिस्टोरिकल ईयर रहे हैं तो यह कहना भी एग्जेजरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और इन 12 वर्षों में हमने न केवल पिछले डिकेड्स के जो गड्ढे भरे हैं बल्कि पूरे सिस्टम में जो रिफॉर्म करना चाहिए वह पूरे सिस्टम में हम लोगों ने रिफॉर्म किया है। हमने भारत के विकास के लिए जो रनवे तैयार किया है, जहां से अब भारत विकसित भारत बनने की उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है। हमारा यह भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनकर रहेगा।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी हवाबाजी के वजीर किंजारपू राम मोहन नायडू के साथ अलग अलग मुलाकात करके श्रीनगर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे को यकुम से 16 अक्टूबर तक मुजवजा तौर बंद करने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा कि इस मौसम के दौरान मुल्की सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद कश्मीर की सैर पर आती है, जिसके मद्देनजर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का जम्मू कश्मीर के साथ हवाई राबता बहाल रखना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में मुतबादिल इंतजाम करने पर गौर कर रही है। यह बात काबिल जिक्र है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की अजसरे 9 मुरम्मत और रीसर्फेसिंग के लिए रनवे को 16 दिन के लिए बंद करने की तजवीज रखी गई है। इससे कबल वजीराला ने कौमी राजधानी में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में भी शिरकत की, जहां उन्होंने रोजगार, सियाहत, बुनियादी ढांचे और तरक्याती तरजीहात को उजागर किया। दरी असना वादी के एक मारूफ फनकार और गुलकार वहीद जिलानी ने वजीराला से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर के फनकारों के मसाइल मुतालिका मरकजी वजरा की नोट्स में लाए। वजीर सेहत सकीना इतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तकम बनाने और तिबी खदमात की फराहमी में बेहतरी लाने की वादाबंद है। वजीर मौसुफा ने श्रीनगर जिले में खानियार और हजरतबल इंतखाबी हलकों का दौरा करने के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने आम लोगों से ताकीद की कि वो तिबी इदारों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर और एमएलए हजरतबल सलमान अली सागर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने सस्ती, काबिल एतमाद और मौसर ट्रांसपोर्ट खदमात की फराहमी में जेकेआरटीसी के अहम रोल को उजागर किया है। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 88वीं मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कारपोरेशन को जदीद माली तौर पर पायदार और मुसाफिर मवाफिक इदारे में तब्दील करने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान जेकेआरटीसी मुलाजमीन के लिए 7वें पे कमीशन की स्केलों के नफाज की मंजूरी और कई दीगर खदशात और मसाइल पर भी गौरखोज किया गया। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली हुकूमत मुआशरे के हर तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। वो उनसे मिलने आए जम्मू खत्ते के कई वफूद से बात कर रहे थे। वजीर मौसुफ ने महकमा जल शक्ति के अफसरों को जमीनी सतह पर जायजा लेकर आवाम के लिए पीने के साफ पानी की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। बैन रियासती कानून साज तावन की जानिब एक कदम बढ़ाते हुए कर्नाटक कानून साज असेंबली की पेटिशन से मुतालिक कमेटी ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठौर और पेटिशन कमेटी के मेम्बरान के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर दोनों कानून साज असेंबलियों की मजकूरा कमेटियों के काम के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की इथिक्स कमेटी के चेयरमैन निजामुद्दीन भट्ट की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान लेजिस्लेटिव एहतसाब से मुतालिक इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंतजामिया के फरोग और सार्फिन को बेहतर खदमात फराहम करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। गांधरबल में आज महकमा ज़राअत के एहतमाम से खेत बचाओ अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे की सेक्रेटरी नीतू गुप्ता ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने माहौलियाती एतबार से पायदार ज़रई सरगर्म

0: खूबियों को फरोग देने की अहमियत उजागर की। उन्होंने किसानों से नामियाती काश्तकारी के तौर तरीकों को अपनाने की ताकीद की। प्रोग्राम के दौरान नाजम ज़िरात कश्मीर सरताज अहमद शाह ने गांधरबल जिले में ज़रई मंजरनामे का खाका पेश किया। इस मौके पर किसानों को सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट शूटर जसपाल राणा के फौत होने पर सदमे का इजहार किया है। एक ताजियती पैगाम में LG ने कहा है कि अनजानी बेशुमार एथलीट्स के रोल मॉडल थे और उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया। LG ने जसपाल राणा के सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवान JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर के इंतकाल पर सख्त रंजोगम का इजहार किया है। अपने अलग अलग ताजियती पैगामात में उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। वाजह रहे कि 2019 बैच के JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर इस वक्त हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सामाजिक कारकुन सरवत हिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमारे कश्मीर में हमारे नौजवान हैं, टीनएजर्स हैं, ये गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलव्वस हो रहे हैं। लेकिन इससे ओवरकम होने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बच्चे हैं इनको हमें वापस लाना पड़ेगा, इनको हमें रिहैब करना पड़ेगा, इनको हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम और वो एग्रेसिवली और ज्यादा इसमें कार्रवाई करे ताकि ड्रग्स जो ये गंदगी यहाँ पे फैले इसको जड़ से खत्म किया जाए। इसके अलावा जो हमारे जो जिम्मेदारान है, खासकर जो हमारे माँ बाप है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं आजकल।
0: मनुष्यात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने पुलवामा जिले के सांबोरा इलाके में शेबीर अहमद खान नामी ड्रग स्मगलर की जायदाद अटैच की। गांधरबल में पुलिस ने शालबुग के रहने वाले फयाज अहमद खांडे नामी मनुष्यात फरोश को गिरफ्तार किया है। हंदवारा में पुलिस ने जमीन के एक रुकबे पर उगाई भंग की बड़ी मिकदार को तबाह कर दिया। अनंतनाग में ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज पुलिस अफसरों की एक मीटिंग तलब करके मुहर्रम की आमद, श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत और मेला खीर भवानी के इनेकाद के लिए पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस फोर्स के मुख्तलिफ शोबों के अफसरान ने उन्हें इस सिलसिले में किए गए इंतजाम के बारे में तफसीली जानकारी दी। दरियासना श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में आज पुलिस की जानिब से एक मॉक ड्रिल का एहतमाम हुआ। गांधरबल में जिले के SSP सुधांशु धामा की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में यात्रा के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने खलीफा दोम सईदना हजरत उम्र फारूक रजील्लाह ताला अनहु के योम शहादत के सिलसिले में अपने एक पैगाम में कहा है कि हजरत फारूक आजम रजील्लाह ताला अनहु की हुक्मरानी अदलो इंसाफ पर मबनी रही है। मौसूब ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में हाजिरी देकर वहां नमाज जुमा अदा की। इस दौरान हजरत फारूक आजम रजील्लाह ताला अनहु के योम शहादत के सिलसिले में वादी की खानकाहों, मसाजिद और जियारतगाहों में योम मजालिस का इनाकाद हो रहा है। पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली सरकार ने अवामी फलाह बहबूद के लिए कई प्रोजेक्ट

0: शुरू किए हैं। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवामी मसाइल को हल करने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा जम्मू में कई मुअज्जज शहरियों के साथ मुलाकात करके आम लोगों की तरक्याती जरूरियात और मरकज में एनडीए हुकूमत की 12 साल की हुसूलियाबियों पर तबादला ख्याल किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने आज काजीगुंड में नव्यू टनल का दौरा करके वहां मुसाफिरों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने पुलवामा काकापोरा पांपोर सड़क की खस्ता हालत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि खत्ते के सबसे बड़े सनती मराकज को जोड़ने वाली ये सड़क फौरी तजदीद मरम्मत का तकाजा करती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अहम सड़क इलाके के आम लोगों के साथ साथ तिजारत और इक्तसादी तरक्की की राहदारी भी है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर के तिबी दारू में बकौली उनके डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के नतीजे में मरीजों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीएम शाहीन ने इस मसले को हल करने के लिए जरूरी इकदाम करने का सरकार से मुतालबा किया है। वजारत खारजा की जानिब से शुरू किए गए पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत कारगिल में 15 और 16 जून को मोबाइल पासपोर्ट वैन सहूलियात दस्तियाब रही गई हैं। श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिसर बी एस रावत ने कहा कि इस खदमत से मुल्क के बाशिंदों को आसान तरीके पर पासपोर्ट फराहम करने के सरकार के अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि यह सेवा मजकूरा तारीखों पर बेमाथांग कारगिल के सियाहती सहूलत मरकज पर दस्तियाब रहेगी। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एहतमाम से मुनाकिदा सनतकारी का तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्ताम पजीर हो गया। विमेन्स आईटीआई जम्मू के इश्तराक से मुनाकिद किए गए इस प्रोग्राम में 32 खवातीन ने शिरकत करके कारखानादारी की तरबियत हासिल की। इख्तामी तकरीब पर मुकर्रीन ने तरबियत हासिल करने वाली खवातीन से ताकीद की कि वह अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर अपने और दूसरों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनाकिद होने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान के दौरानिया में 15 मिनट का इजाफा किया है। इस तरह इम्तिहान बवक्त 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि वो दाखिला इम्तिहान को शफाफ तरीके पर मुनाकिद कराने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने इदारा जाती सनती और तिजारती सार्फिन पर रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल खरीदने पर पाबंदी आयद की है। उन्हें अपनी जरूरियात मखसूस कंज्यूमर पंपों से पूरा करने की हिदायत दी गई है। सरकार ने कहा है कि यह फैसला मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के नतीजे में सप्लाई चेन में पैदा होने वाली रूकावटों को नजर में रखते हुए लिया गया है। जम्मू में शुमाली जोन के लाइजन अफसरों की 2026 की कॉन्फ्रेंस जारी है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल से हो गया जिसमें शुमाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले टेक्सटाइल सेक्टर के लाइजन अफिसर और दीगर नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कपड़ों की वजारत के तहत काम करने वाली टेक्सटाइल कमेटी ने किया है जिसने सनत से जुड़े मामलात पॉलिसी दरामद अमल दरामद मियारात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। बड़गाम जिले के खान साहब इलाके में कायम एक प्राइवेट स्कूल की बस को आज जिले के सुरसियार इलाके में हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने हुकाम का हवाला देकर खबर दी है कि हादसे में बस के ड्राइवर की मौत वाका हुई जबकि दो तालिबे इल्म जख्मी हुए। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरुबे आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। हालिया दिनों वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नई दिल्ली में मसरूफियात ने एक बार फिर इस हकीकत को उजागर किया है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकज और

जय हिंद फौजी भाइयों, वक्त हुआ है रात के 8 बजे का और मैं हूं आपका मेजबान अब्बास यावर। आज की इस खूबसूरत महफिल को हम अपने उन फौजी भाइयों के नाम करते हैं जो वतन अजीज की सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दोस्तों, 90 की दहाई सिर्फ एक जमाना नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है। वो दौर जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिलों में बस जाया करते थे, जब मोहब्बत के इजहार में अल्फाज कम और नगमे ज्यादा बोलते थे। हवा के रोशन पे भेजे हैं हमने दिल की दुआएं, सरहदों पर जो खड़े हैं वही वतन की सदाएं हैं। आगाज करते हैं हम फिल्म बाजीगर की यादगार नगमे के साथ।

अब जिस तकमे की हम बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं।

0: पहली खुशबू, पहली बारिश, पहली चाहत की बात। पहली खुशबू, पहली बारिश, पहली चाहत की बात, दिल के सहफों में हमेशा ताजा रहती है वो रात।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
3: हेलो मम्मा।
1: हाय।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: dāxan tsaqpa yan tēs program yanan chūt pīng yul tūng shmaq mīni fiyā. Mīrdi mīwī kāngā chas Akashwani Kargil nāzirin chīn, wāq spū tsani tūs sūt kēt namrāt jīb chū jāgā chīn dukā sa tāngā chas Akashwani dīlī nā hindi, angrizi dō nā urdi khabaru nā rilevit rilelā dāng bāzāt.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला।

0: चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ अकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है, उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई

0: has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar, and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शाज़े डिफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर ऊन सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के ख्वातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने के लिए काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म ताउन दे रही है जो ख्वातीन को माली एतबार से आजाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिरात जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निजामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत की देखभाल से मुतालिक खिदमात, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर जरूरी

ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है, तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती। वो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है ये बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी, पर मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे यह भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और इन सब से अनेक अड़चनें जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला, मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका एक नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स है, हमारे अधिकारी गण है और विशेष रूप से NHIDCL के MD कृष्ण कुमार जी है और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL के भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है, कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं उसमें से जो 15 से पारिस पास की तक टोल एन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है, जो द्रास करगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक टू लेन प्योर शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है, जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं, 6 किलोमीटर का DPR जो है वो भी अभी 15 है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूँ। लेह में 2 लेन प्योर शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1,000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ, आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन प्योर शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 किलोमीटर में घोषणा करता हूँ, इसका DPR अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर, इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा, ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी।

0: इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका डीपीआर भी बनाने अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में हम आ जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका डीपीआर बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है, दिसंबर 2026 के पहले इसका भी डीपीआर बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहां 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2,00,000 करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है, 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर, 95% काम पूरा हुआ है, बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम चल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की एक यहाँ की परिस्थितियां है उसमें रोड में काफी अड़चने आई, लैंडस्लाइड्स हुई, और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल इस मार्ग पर हम बना रहे हैं और उसमें से 20 टनल बन गई है और 5 टनल पर काम चल रहा है। 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और पहले 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। और 5 टनल ये पूरी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। श्रीनगर सोनबर्ग गुमरी तक ये 2 लेन पेव शोल्डर 4 लेन वाला 1500 करोड़ 57 किलोमीटर, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ और डीपीआर जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसके काम को हम शुरू करेंगे। सोनबर्ग और लद्दाख को जाने वाले पर्यटकों के लिए इसका फायदा होगा, अभी जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 45 मिनट में हो जाएगा।
1: खोंग सियांग जासुमी नालजोंस फोतोला टनल पेकांग टनरी लसिरुन गंगरगया छचस इन जरे जरसेदियां दी टनल पोल दंचाउस बसे थक पो निजे सोसे बेसे वक्स पुलांग ब्रिमो योचस इन जरे जरबा सोंगदेव न चोसला कारगिल न जंसकारीर गैलम पे कार्डुलेन योत्खान लसुन सक ब्याजर सकपा गांगया छचस इन जरे जेसियां द्रास कारगिल दोना पश्चिमीर गैलम उनिका करोट खचिगी हिग्यानोक चोखे लसुन सक शोक्स न न्यंबो डुलेन ची गोते इन जरे जरबा सोंग
2: टनल पुल दंचस पे का कारगिल जिले दोनों द्रासला लेकिन थका बासों दी वक्सला अंजुमन जमेत उलमा इसने आचार्य करगिली चोसना प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्ट्रोलिका शेख इब्राहिम खलीली दुना सज्जाद हुसैन करगिलिस टनल पो गांगिया छा थोचस पे का मरकजी सरकार ला उजू जरिंची खो अस्तोद्रा बासों
3: जमयत उलमा इसना आचार्य करगिल तरफ ना इजहार तशक्कुर बागतिमी नदी प्रेस कॉन्फ्रेंस पो मुनाकिद बसिन लिहाजा अचंग तमाम लद्दाखी अवामी तरफ ना सेंटर गवर्नमेंट ला मखसूसन जनाब नरेंद्र मोदी साहेब बहुत बहुत शुक्रिया जरती मची दी देरे ना महफूज असनारिकना कामयाब छचुकी इंशाल्लाह अचा उम्मीद होती इनकी दी खदमात कुनला गंगमस ताउन ता से पार तकमील का थन चुक्स पी बहुत बहुत एक बार शुक्रिया जरत देख सज्जाद करीरी साहेब इन तफसील वसे मुझसे
4: एक बहुत लंबे अरसे से खित्ते लद्दाख के आवाम बिलखसूस करगिल जिले के आवाम द्रास जिले के आवाम एक मांग को लेकर के हमारे बहुत सारे लीडर हमारे बहुत सारे उलमा इस मांग को लेकर के और इस हसरत को लेकर के इस ख्वाब को लेकर के इस दुनिया से चले गए और ये टनल की मांग हमारी एक देरीना मांग थी एक पुराना ख्वाब था जो

0: आज अलहमदुल्ला पाई तकमील को पहुंचा है। आज ये ब्रेक थ्रू जोजिला टनल का होने जा रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी साहब, उनका अस्तह दिल हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी खसूसी तवज्जह की वजह से ये जो टनल है ये पाई तकमील को पहुंचने जा रहा है। इसके साथ साथ हम हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी और जनाब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी सरपरस्ती में और नितिन गडकरी साहब की मेहनत की वजह से ये जो ख्वाब है ये पूरा होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये टनल जो है शुरुआती पीरियड में, खासकर विंटर के टाइम जब हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत बहुत रिस्की हो जाती है, तो उस समय ये टनल कम से कम इमरजेंसी के लिए, आमद रफ्त के लिए जल्द अज जल्द खोल दी जाएगी। इस जोजिला टनल के न होने की वजह से हम पूरी दुनिया से और पूरे मुल्क से 6 महीने के लिए हम मुनकता हो जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाप हमें लग रहा है कि शर्मिंदा ताबीर हो गया है। तकरीबन 80% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, अब इसमें फिनिशिंग का और ये सारा काम बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम भी पाए तकमील तक पहुंचेगा।
1: यूटी लद्दाख से चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्राज द्रास से जिले ऑफिसर उन्ना न्यम्बो ग्रबशिक मलेंग खो से लोकसो यागे प्रोजेक्ट उन्ना मीमांग सुनी खिदमत उन्नीस तल्लुक बसे इनगा वक्सला जल जीवन मिशन सख्यत बागबानी शेष डोनर डेलुक्सिस कोरला सल्पो बसे हगोन लेनेन चिक दियो निका नोरो बसे तालुक्स बसे इंदी वक्सला सेक्रेटरीज मुतालिका खकुरुन ला लोक्सोस म्यांग सुहूलियत उनसा तनपोश चोस जरे खकचन खसकुन तांसे इन जिक्सकोर प्यानो श्तापोलिस दूर चिगांग श्या सोंग देर गैबना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रासी जिक्सकोर बसे पुरकिना शीनेस का त्यांग ज़ब्रिस्कान शोखबू निस दुनला क्योंसे इन खोंगजियां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रासी जिक्सकोरां बसे मीमांग सुनला थोबेन योतखन सहूलियत उन्नीस कोरलां तालुक्स बसे इन देर गैबना चीफ सेक्रेटरीज पावर ग्रिड द्रास सब स्टेशन पे जिक्सकोरां बसे डुलेन योतखन प्रोजेक्ट उन्नीस तालुक्स बेन नमजाओ स्ट्रोंगलुक्स यखपी मिंगनाल चांगफ्रू चुकपी तकरीब चिगानुगान खक लेंसपिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना जिला इंतजामिया करगिल ना न्यम्बो लोकसो यर्ग्यासी प्रोजेक्ट उनिका डुलेन योतखन ला सुनील तालुक्स बे मिंगना ग्रब शीख वर्चुअल जोस्ते का मलेंग ख्योंसपिंदी वक्सला डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार इस डुलेन योतखन प्रोजेक्ट उनिल ला सुनीस कोरला एलजिया हगोन तांस गाँव यांग नुकफे से संग देलुक शेष दोना सरहियां सी फ्योक्स पो द्रेसे योतपिन द्यावना चोसला फ्लेक्शिप पे नाल जोंस माल यांग नुक क्यों अन योतखन प्रोजेक्ट हम सरोवर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम खिदमत अवाम ई ऑफिस रिफारम दोना ए लस्खा तामी फ्योक्स सुन यांग नुगां तलुक्स बसे इंदी वक्सला लद्दाख रावान रियुली यर्गेसी कौंसल करगिल गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोनिस दिल्ला सुनसाक मालें ख्योमी मिंगना थोंगन योतखन शकबलास बर्दोनीस कोरला जरबा सोंगयांग जिले यर्ग्यासी मिंगनाश तंदुक्स बचा स्पेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ला उजू जेस लेफ्टिनेंट गवर्नर इस खाकुर उनला दी प्रोजेक्ट उन वक्त सी नाल जोंस गांर्ग्या बसे थमा थोन चुक जरे खसको तांसे इन खोंगजियांग सेरहियांग नमजी फ्रलुक्स शहरी यर्ग्यासी गोम्बाउन दोना करगिल सब ऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट बोटी छोक्सना स्तोंगमा मलसांस कामी मिंगना लेन एंचिक योतखन गोम्बाउनी तालुक संग बसे इन कसायां खबर चीक लद्दाख रावान रियुली यर्ग्यासी कौंसल करगिली गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोनिस हुंदुरमान गम्युली जिक्सकोर बसे खाकचन यर्ग्यासी प्रोजेक्ट उनिका डुल एंचिक योतखन ला सुनील तालुक बसे इन दी वक्सला खोंगना न्यम्बो कौंसलर पुएन मोहम्मद अमीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोना ए मुतालिका खक्खुर उनसख जुक्से योतपिन तस्पी मिंगना जरना सीसीस हुंदुरमा ने लिफ्ट वाटर सिप्लाई प्रोजेक्ट पिल तालुक्स बे वक्सला खक्खुर उनिस दी प्रोजेक्ट पोर्ट मुल्क करोड़ चौबगत न लाख निशुसुमिका चुन चिक योते इन जरे जेसियांग हुंदुरमान ब्रोगामल यांगनो क्यों एंचिक योते इन जरे जर से दी वक्सला खोंग इस दी प्रोजेक्ट पेका रियाला चला गुन कोले वक्सी नाल जोंस गार गया बसे थमा थोन चुक जरे खाकचन खसकोन तांसे इन देर गया अपना डॉक्टर जाफर शिलिक जर जंबे का डुलेन योतखन ला सुनील तालुक्स बेन खाकुरुन ला रियाला बसे शेत ना न्यंबोल ला सुनश्तन पो जोग जरे जर से यां हुंदुरमान लिफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पे